0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी. व्हाट एन अमेजिंग स्टार्ट फॉर द शो यार, मजा आ गया सुन के. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम. तनीषा की जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान. क्या हाल चाल है? वेंसडे का दिन जुलाई 29th और कल थर्सडे है और वीकेंड साथ में. कल महीना भी खत्म हो रहा है. क्रेजी भाई, भागा है ये महीना तो. और हम इसके पीछे भाग रहे हैं. दिस ट्रैक इज कमिंग अप.

0: समझ रहे हो मतलब जज्बातों को? All these amazing tracks are lined up for you in this hour. पूरे चार घंटे ढेर सारी बातें करने वाले हैं और ऐसे ही कमाल कमाल के गाने सुनने वाले हैं, पर शुरुआत करते हैं आपकी गुड मॉर्निंग से, क्योंकि उसके बिना कैसे दिन की शुरुआत हो सकती है. हाँ, कुछ मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी जिन्होंने अभी ट्यूनिंग किया है, सुनना शुरू किया है, तो 3311106 इज द नंबर. एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेज दो मेरी जन, ऐसे ना मेरी भी मॉर्निंग बन जाती है यार. तो कुछ देर में लौट कर आते हैं और फिर पढ़ेंगे वो मैसेजेस. यू कैन ऑल्सो कॉल बाय द वे 444-1063 पर. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास मेरी जान.
1: Here we go.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Denisha. Denisha. Denisha.
1: What a beautiful track, yaar. Mohit Chauhan aur Nikita Gandhi ki awaaz mein. Jab hai main Angel se ghar, only on Radio Olive 106.3 FM. Denisha, aapke saath bindaas morning chal rahe hain yahan par. And good morning messages jo aaye hain, zara dekhe kya bheja hai aaj thought of the day mein. So obviously, सबसे पहले तो नाजनी जी का ही मैसेज होता है. एंड शी सेज, गुड मॉर्निंग. अ गुरु इज नॉट जस्ट अ टीचर बट अ गाइड हु लाइट्स द पाथ ऑफ विजडम. दैट इज अमेजिंग. एंड वन मोर थिंग, अ गुरु कैन बी एनीबडी. ऑब्वियसली द टीचर हु हैव टॉट अस अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट कैन बी आवर पेरेंट्स, इट कैन बी आवर सिबलिंग्स, इट कैन बी एनीबडी. बस ना आपका नजरिया वो सीखने वाला होना चाहिए. देन अबरार जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग. और शशिकांत पाटिल जी कहते हैं, अ वाइज फिजिशियन सेड द बेस्ट मेडिसिन फॉर ह्यूमन इज केयर एंड लव. समवन आस्क्ड इफ इट डजंट वर्क, ही स्माइल्ड एंड आंसर्ड इंक्रीज द डोज. एंड दैट इज सो ट्रू, राइट. संत जी का भी गुड मॉर्निंग आ गया है जी. सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. और मेरी वाली गुड मॉर्निंग विश तो मैं भूल ही जाती हूँ यार. तो ये लो जी,
2: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस.
1: और मैसेजेस आते रहने चाहिए. 3311063 पर मैसेज कीजिए मुझे. और फिलहाल भेज रही हूँ कूल सॉन्ग ऑफ द आवर मोमिना मुस्तफा की आवाज में, नवाज़िश करम. स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास मेरी जान.
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.
5: Cool song.

0: बैंकिंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

You're listening to Radio Ala 106.3 FM Tanisha aapke saath Bindaas mornings chal rahe hain yahan par and ab mujhe Pali ji ka good morning aaya hai Bilal keh rahe hain lovely song ye jo pehle nawazish karam chalaya tha na uske liye gaa tha unhone aur Atul ji roz itni sundar sundar jagah se photos bhejte hain bhai aaj kahin to pahadon mein cycling pe gaye hue hain morning is an unspoken promise that the best parts of your day are still waiting to happen so true abhi to din ki shuruaat hai abhi se kaise decide kar sakte ho ki aaj ka din kharab jane wala hai nahi sab badhiya hoga and you know every day aise mein ज्ञान लेकर आती हूँ कि भाई थोड़ा मोटिवेशन जरूरी होता है ऑब्वियसली इंस्टाग्राम से लेकर आती हूँ सो आई रेड वन कोट विच सेज इफ यू आर एन ओशन बी एन ओशन डोंट बी अ पॉन्ड टू मेक अदर्स फील कंफर्टेबल समझ रहे हो बात को वी यूजुअली डू दैट यार जो हम चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं अपनी सराउंडिंग को कंफर्टेबल करने के लिए अपने आसपास के लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए कभी कभी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं फ्रॉम डूइंग द थिंग्स वी एंजॉय वी लव राइट नेवर डू दैट नो अगर है आपकी पर्सनैलिटी बड़ी तो आसपास के लोग एडजस्ट करेंगे आपने नहीं एडजस्ट करना है ठीक है वी हैव टू लिव आवर लाइफ द वे वी वॉन्ट द वर्ल्ड विल एडजस्ट नॉट यू मेरी जान आप स्पेशल हो यार ये फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देने का है चिल करने का है और अपना डे एंजॉय करने का है ठीक है सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक सोना मोहपात्रा की आवाज मी जिया लागिना फ्रॉम द मूवी तलाश स्टे ट्यून्ड एंड्रू बिंदास

0: अरिजीत सिंह और पूजा तिवारी की आवाज में पीपा मूवी से मैं परवाना हूँ। बड़ा ही मस्त गाना है, मतलब अलग सी वाइब है इसकी वीकेंड वाली। अब मुझे हर गाना वीकेंड वाइब ही देने वाला है, क्योंकि यू नो यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM तनिषा, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर। और वक्त हो चुका है
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में हर रोज मैं एक ऐसा सवाल पूछती हूँ जिससे आप भी कुछ नया सीखते हैं और मैं भी कुछ नया सीखती हूँ। वेल आई एम लुकिंग फॉर दिस क्वेश्चंस, ऑब्वियसली ये चीज़ें मुझे भी यूजुअली पता नहीं होती है, कुछ चीज़ें पता होती है बट मोस्ट ऑफ देम मुझे भी उसी दौरान जब मैं आपके लिए सवाल ढूंढ रही होती हूँ तो पता चलती है, एंड दिस ऑल्सो ऐसा ही हुआ है। सो आज का जो सवाल है, विच इज़ द फास्टेस्ट पैसेंजर ट्रेन इन द वर्ल्ड, सबसे फास्ट पैसेंजर ट्रेन कौन सी है दुनिया में, वो आपने मुझे

0: बताना है 3311 1063 इज द नंबर, उस पर व्हाट्सएप कर दें या फिर कॉल कर दें 4444 1063 पर, और बताएं कि सबसे ज्यादा फास्ट पैसेंजर ट्रेन कौन सी है दुनिया में. मधुश्री जी की आवाज कितनी मीठी मिश्री की तरह. एंड आई रिमेम्बर लास्ट ईयर व्हेन शी केम हियर फॉर वॉइस ऑफ कतर, वो उतनी ही स्वीट है. शी टॉक्स लाइक दैट ओनली, जिस तरह से वो गाती है और उतना ही मीठा बोलती है और उतनी ही यू नो काम एंड कंपोज्ड. यू विल फील द ऑरा कि भाई मतलब इन्हें गुस्सा वुस्सा नहीं आता होगा. डेफिनेटली आता होगा पर हमारे सामने तो नहीं आया है. एंड यू गेट दैट वाइब. कुछ लोगों से मिलके आता है ना कि यार इसको तो बहुत गुस्सा आता है या फिर ये तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है, पर उन्हें मिलके ये लगा कि यार ये कितनी काम है. शी इज़ लाइक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर आ भी गई तो इट्स ओके, मैनेजेबल है. उनका वो वाला ऑरा है एंड इट इज़ सो कामिंग एंड सो ब्यूटिफुल. हाँ जी, ये दोनों गाने आने वाले हैं कुछ ही देर में, लेकिन उसके पहले हम सुनेंगे धक धक रीलोडेड. पर एक बार फिर से सवाल बता दूं, विच इज द फास्टेस्ट पैसेंजर ट्रेन इन द वर्ल्ड. 3311 1063. और जस्ट जी का गुड मॉर्निंग आया जी, गुड मॉर्निंग टू यू टू. स्टे ट्यून एंड जियो विंदास
1: रेडियो ऑलिव पर. Song of the Year. Yeah,

0: टास मॉर्निंग, टास मॉर्निंग हर जी तमनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million rials विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par aur maine ek sawal pucha tha ji.
2: Radio Olive presents Blackboard Stories.
1: और सवाल ये था कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट पैसेंजर ट्रेन कौन सी है, और जितनी तेज़ी का ये सवाल था उतनी तेज़ी से मुझे यहाँ जवाब आए हैं, इतने सारे आंसर्स आए हैं एंड सबके सही जवाब है यार, मतलब आप सबको पता था ऑलरेडी, मैं ही थी जिसे नहीं पता था. सो यस, द फास्टेस्ट पैसेंजर ट्रेन इन द वर्ल्ड इज चाइनीज बुलेट ट्रेन, दैट इज CR 400 फॉक्सिंग, एंड करंटली वो फास्टेस्ट कन्वेंशनल हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है जो कि रेगुलर पैसेंजर सर्विस के लिए यूज़ की जाती है. और अगर हम ऑल ओवर पैसेंजर ट्रेन्स की बात करें तो देयर इज शंघाई माग्लेव, एंड ये जो चाइनीज बुलेट ट्रेन है इसका स्पीड है 350 किलोमीटर पर आवर भाई साहब, एंड देन ये जो शंघाई माग्लेव है उसका स्पीड है 431 किलोमीटर पर आवर. Crazy यार, this sounds absolutely mad. मतलब उसमें बैठ के भी मजा आएगा, it will be kind of adventure ride है ना. Yeah, that's what I feel. कभी ना कभी इंशाल्लाह. हाँ जी, बाकी कुछ देर में लौट कर आती हूँ, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है. सुंदर रेडियो जियो बिंदास.
3: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशक्ल.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: हाय, मैं हूँ विवेक आनंद ओबेरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
5: हर सुबह 6 से 10 आर जे निशा को बिंदास मॉर्निंग में. मॉर्निंग
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
7: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.

0: Alicia.
1: You're listening to Radio Alive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning chal rahe hain. Aap ek crazy movie se suna aapne goli maar bheje mein. Ye bhi revived version hi tha. Original to kuch aur tha, you know. And that was Sanju Baba ki movie ka gaana. And today is Sanju Baba's birthday, by the way. Yes, Sanju Dutt is celebrating his birthday today. Wo hum baad mein baat karenge. Pehle hum ek aur important baat karna chahte hain, ji. थोड़ा लाइकनेस तो देखो आने वाला है, क्योंकि वेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि आज और कल बारिश की संभावना है कहीं कहीं पर. आई होप हो जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और बट याद ये भी है कि बारिश हुई और उसके बाद फिर से गर्मी पड़ी तो ह्यूमिड तो और ज़्यादा हो जाएगा. पर ठीक है, प्रेजेंट में जीतना, आज की खुशी पे फोकस करते हैं, कल का कल देखा जाएगा. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज, और हमने वही करना है. सो यस, देयर इज संभावना कि बारिश हो सकती है. सो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से ड्राइव कीजिएगा अगर ऐसा हो रहा है तो. और यू नो ऑल द नेसेसरी थिंग्स, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ लेकर चलिएगा एंड स्टे हाइड्रेटेड मेरी जान. ठीक है, और फिलहाल भेज रही हूँ जबरदस्त हिट योर वे. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान.
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: प्रीमियर कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वाल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
0: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
1: अरे भाई, वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वाल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वाल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वाल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी। लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: All the astronomy enthusiast, आप सबको कॉल दे रही हूँ मैं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. You're listening to Radio Oliver 106.3 FM, तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड डेल्टा एक्वेरिड मीटियर शावर आज रात को कतर में दिख सकता है. जी हाँ, सो कतर कैलेंडर हाउस ने अनाउंस किया है दैट रेसिडेंट्स ऑफ कतर विल बी एबल टू सी एंड ऑब्जर्व द डेल्टा एक्वेरिड मीटियर शावर. क्या करना होता है उसके लिए, आपको ऐसी जगह पे जाना है सिटी से थोड़ा सा दूर जहां पर यू नो आसमान क्लियर हो, आप क्लियरली देख सके. बेसिकली ये जो डेल्टा एक्वेरिड मीटियर शावर है ये हर साल मिड जुलाई से लेकर अगस्त 23 के बीच में आता है एंड उसका जो पीक एक्टिविटी है वो जुलाई 29 और 30 को होने वाला है. और साथ ही इसका जो नाम है डेल्टा एक्वेरिड मीटियर शावर, इसे कॉन्स्टेलेशन एक्वेरिस से मिला है क्योंकि वो उस एरिया से आता है. सो या इफ यू आर एन एंथुजियास्ट, यू लाइक टू एंजॉय एंड विटनेस सच इवेंट्स, सो डू नॉट फॉरगेट आज रात को मिडनाइट के बाद से आप इसे देख सकते हैं. और साथ में मुझे सुनीता जी का मैसेज आया है यहाँ पे. आई एम सो सॉरी सुनीता जी, मैंने अभी कुछ देर पहले जो गाना चलाया था गोलीमार भेजे में, आई सम हाउ कंफ्यूज इट विद वास्तव इंस्टेड ऑफ सत्या एंड आई सेड कि उस मूवी में संजय दत्त है जिस मूवी से ये गाना है. सो सुनीता जी ने यहाँ पे मुझे करेक्ट कर दिया है कि भाई हमारे टाइम की आइकॉनिक मूवी है, ऐसी बातें मत करो, आप गलत मत बोलो, सत्या मूवी का गाना है वो, इट्स नॉट फ्रॉम संजू बाबा मूवी. माफी चाहूंगी इस बात के लिए, बट संजू बाबा का बर्थडे, ये बात सही है. ठीक है, फिलहाल भेज रही हूँ एक ऐसा गाना जो आपको फुल ऑन नॉस्टैल्जिया में भेज देगा नीरज श्रीधर की आवाज में, मेरा जीना है क्या मरना है क्या फ्रॉम द मूवी आशाएं. एब्सोल्युटली स्टनिंग ट्रैक. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

0: तनिषा
1: गुर नजर के आवाज में दिल टूट जा तू ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. एंड अगर आप इस वक्त इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ दी गल्फ ब्रांड्स की सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे बच्चों की पीओवी सेल्फीज, यू नो, वो रैंडमली ऐसे फोन उठा के सेल्फी कैमरा ऑन करके फोटो खींच लेते हैं, एंगल का कोई लेना देना नहीं है, एंड फिर भी वो इतनी क्यूट पिक्चर्स होती है. वो वाली पिक्चर्स आपको हर ब्रांड के पेज पे दिखेगी इस वक्त. एंड दोहा में भी ये शुरू हो चुका है, सऊदी से ये स्टार्ट हुआ था एंड पीपल आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्यों. कल से ही शुरू हुआ है लेकिन आज सुबह तक हर जगह फैल गया है एंड एवरीबडी स्पेकुलेटिंग कि भाई क्यों पोस्ट कर रहे हैं, क्या कैंपेन है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट. नोबडी इज एबल टू फिगर आउट. सब अपने अपने स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं. लाइक कुछ मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इट्स बेसिकली फेक मिस्टेक और गाफी मार्केटिंग. कभी कभी जब ब्रांड्स को यू नो बस क्रिएट करना होता है ऑर्गेनिकली, क्यूरियोसिटी और एंगेजमेंट बढ़ानी होती है लोगों में, तो दे डू सच काइंड ऑफ मार्केटिंग gimmicks. So we don't know what exact reason is there behind this kind of marketing, this guerrilla marketing. Lekin bahut kamal ka jo bhi trend hai ye, because itni cute pictures hai. I just saw one picture old Doha port ki. There is a very cute little girl. She has taken a selfie with the duck jo wahan Doha port par hai. And it is so cute. And I don't want this trend to end. It is beautiful. अगर आपने नहीं check out किया है तो जरूर check out कीजिएगा और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. And yeah, if anyone of you know the reason, do let me know. Yeah, मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं तो बता ही दूंगी आपको.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लुलू हाइपरमार्केट में।
2: लुलू, where the world comes to shop. Just feel

0: हमेशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: Denisha.
1: Denisha. Rekabar Dwash ke vaaz mein mila mila from the movie Happy Ending. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par. And after so long, Johnny Depp is coming back. Yes! Unhone kal apni aane wali jo movie hai, I think Christmas ke time par aegi, uska trailer dala hai, Ebenezer. So it is, I think, a folklore from UK or somewhere. I have to read about it. But mujhe trailer dekke yahi feel aayi. And then usme na ek dialogue hai, the character's name, wo is tarah से बोलता है बा हम्बग. ओके, सो व्हाट जॉनी डेप डिड, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे थे. सो ही पुट अ पिक्चर जिसपे सिर्फ BAH लिखा है, जिसपे एक पिक्चर पोस्ट की जिसपे सिर्फ HUM लिखा है, एक पे BUG लिखा है. सो जो हम वाली थी ना, उस पे पहुंच गई इंडिया की जनता. जी हाँ, अपनी क्रिएटिविटी लेकर. और कॉमेंट्स में गाने बना रहे हैं, हम के आगे लिख दिया है, हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हम दिल दे चुके सनम. डायलॉग्स भी लिखे हैं, हम तो फकीर आदमी है जी, झोला लेके चल पड़ेंगे. एंड समबडी हैज रिटन अ डायलॉग, हम के आगे हमजा अली मजारिया कर रहे हैं, हम दिल दे चुके सनम. और हम तुम, देन हम पे ये किसने हरा रंग डाला, और तेरे हम तेरे बिन रह नहीं सकते. ओ माय गॉड, देयर आर सो मेनी कमेंट्स लाइक दिस, एंड आई वाज लाइक कॉन्स्टेंटली रीडिंग देम एंड लाफिंग लाइक एनीथिंग. और होता है कई बार यार कि पोस्ट इतना फनी हो ना, पर कमेंट्स में जो चार चांद लगा देती है जनता, क्रेजी क्रिएटिव लोग हैं यार. नाउ आई वांट टू नो अबाउट योर क्रिएटिविटी. आप बताइए कि अगर इस हम के आगे आपको सेंटेंस कंप्लीट करना हो तो आप क्या कहेंगे. 3311063 पर मैसेज कीजिए और बताइए. फिलहाल भेजिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर, हनी सिंह आ रहे हैं लव डोज देने के लिए. स्टे ट्यून एट जियो बिंदास. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें।

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

Alisha. Neeraj Shridhar aur Alisha Chinoy ki awaaz mein Ticket to Hollywood from the movie Jhoom Barabar Jhoom only on Radio Olive 106.3 FM. Danisha aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par and aap jitna socho na aap imagine nahi kar sakte har din duniya kuch na kuch crazy aapko dikhati ja rahi hai. एंड राइट नाउ तो यही हो रहा है. अभी मुझे पता चला है कि एप्पल जो है वो एक नया प्रोग्राम लेकर आया, दैट इज अपग्रेड योर एप्पल और रेंट नाउ पे लेटर. यस, यू कैन नाउ रेंट और टेक एप्पल डिवाइसेस ऑन लीज. यस, फॉर अ ईयर और टू ईयर्स आप ले सकते हैं लीज पे. और ये उन्होंने इसीलिए लेकर आया बिकॉज उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई हम जितनी तेजी से प्राइजेस बढ़ाते जा रहे हैं अपने डिवाइसेस की, पीपल विल स्टॉप बाइंग, ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है कॉन्स्टेंटली. सो लाइक कि क्यों ना हम ये ऑप्शन लेकर आए कि लोग उसे रेंट आउट कर सकें और जब उनका काम हो जाए तो देयर विल बी ऑप्शंस व्हाट यू कैन डू विद द डिवाइसेस. सो से इफ यू वांट एन आईफोन एंड यू हैव लीज्ड इट फ्रॉम एप्पल, तो आप एक या दो साल के लिए उसको लीज कर सकते हैं. नाउ आफ्टर दैट अगर आपका हो गया है कि बस अब मुझे नहीं चाहिए, तो आप बस फोन वापस कर दो. मंथली आपको कुछ पे करना पड़ेगा फॉर हर डिवाइस, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट. एंड व्हेन यू आर डन यूजिंग दैट फोन एंड यू आर लाइक ओके आई एम गोना स्विच टू सम अदर फोन्स और व्हाटएवर, तो आप वो फोन एप्पल को वापस कर सकते हो एंड यू आर डन, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एल्स उसके बाद. सेकेंड ऑप्शन इज कि अगर आपने आईफोन 17 लिया था और अब आपको आईफोन 18 से अपग्रेड करना है, तो आप फोन एक्सचेंज करवा लोगे एप्पल से जाके और थोड़ा सा अमाउंट बढ़ेगा बिकॉज यू नो अपग्रेड किया है और मंथली आपके पेमेंट्स चलते रहेंगे. नाउ द थर्ड ऑप्शन इज कि यू डू नॉट वॉन्ट टू गिव द फोन, यू वॉन्ट टू कीप द डिवाइस, तो आप जो थोड़ा सा लमसम अमाउंट पे करेंगे एंड देन यू कैन ओन द डिवाइस. बट आई एम थिंकिंग बाई दिस आइडिया कि आप आज के ज़माने में सोचें, इस टाइम में सोचें, तो कितनी कम चीज़ें हैं जो इंसान खुद ओन करता है, क्योंकि हम सब कुछ रेंट आउट कर सकते हैं. अब हम फोन्स भी रेंट कर पा रहे हैं. What is happening in the world? But I want to know from you, would you like to go for this option, leasing a phone, either a Mac or iPad or an iPhone? Would you want to do that? Batae mujhe 3311-1063 par sending an amazing track. Main idhar full on nachne wali hu studio mein. And I hope ki aap bhi wahan pe nachenge. Stay tuned and Jio Bindaas.

0: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लुनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लुनो हाइपरमार्केट में।
1: लुलु, where the world comes to shop.
2: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on

0: taste from Joya Lucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
1: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस तनिशा को बिंदास मॉर्निंग में
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Tanisha. बहुत ही बढ़िया ड्रैग तेरी याद याद इन द वॉइस ऑफ के एंड जयेश गांधी फ्रॉम द मूवी वाला लाइफ होता वैसी मतलब इट्स अ सैड सॉन्ग यू नो यू आर मिसिंग समबडी पर द वाइब इट्स नेक्स्ट लेवल एंड आई थिंक हमें किसी को याद करना चाहिए तो ऐसे ही करना चाहिए गुड मेमोरीज याद रखोगे तो इसी तरह से याद रखोगे राइट तनिषा के साथ है आप रेडियो 106.3 FM पर बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और कोई भी मेल आए तो उसे बड़ा ध्यान से पढ़ लेना चाहिए ऑल्सो वाइल सेंडिंग ऑल्सो ध्यान से देख लेना चाहिए मैंने कई बार किया है अटैचमेंट भेजे बिना ही मेल में लिख दिया है प्लीज फाइंड द अटैचमेंट सामने वाला इंसान ढूंढ रहा है मेरी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने अपने दिमाग में उसको अटैच करके भेज दिया था बट एक्चुअली आई डिडंट डू दैट एंड ये मेरे साथ इतनी बार हुआ है नाउ रिसेंटली देयर वाज दिस एचआर जिसने एक जॉब पोस्टिंग डाली लिंक्डइन पे अब उन्हें मेल आया होगा कि यू नो पुट दिस पोस्ट ये जॉब डिस्क्रिप्शन यूज करो एंड देन क्योंकि वो इंटरनल चीज है तो बता दिया कि कौन किसको रिप्लेस करने के लिए हम बंदा ढूंढ रहे हैं आगे एचआर ने पढ़ा नहीं वैसा का वैसा उठा के डाल दिया लिंक्डइन पे वहां पे दो एम्प्लॉयज के नाम है जिन्हें रिप्लेस किया जा रहा है एंड इट वेंट क्रेजी वायरल आई थिंक अब 3 वैकेंसीज पोस्ट होंगी वहां पे एक एचआर की जॉब की भी होगी क्योंकि इतनी ग्रेव मिस्टेक के बाद तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ठीक हो पाएगा बट दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी ये किसी के भी साथ हो सकता है यू नो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग हम जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं एंड वी फील कि अरे हाँ ये तो ये चीज है पूरा पढ़ के क्या फायदा है सो डू रीड आउट योर मेल्स प्रॉपरली एंड स्पैम मेल्स अगर लगे तो उसे फटाफट से डिलीट कर देने का एंटरटेन नहीं करने का क्योंकि अपना ख्याल तो हमें खुद ही रखना है ना मेरी जान हाँ जी स्टे ट्यून्ड जी बिंदास

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
0: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरज तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा दस मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. एंड वो कहते हैं ना कि हर रिलेशनशिप में एफर्ट्स बहुत जरूरी होते हैं, राइट? आप अपने पार्टनर के लिए टाइम टू टाइम फ्लावर्स लेके आएं, या फिर अपने पेरेंट्स को कॉन्स्टेंटली कॉल करके उनका हाल चाल पूछते रहें, अपने कॉलीग्स के लिए कभी कॉफी लेकर जाते हैं. पर जब बात आपकी कार की आती है तब क्या, उसे सिर्फ फ्यूल दे देते हैं, दैट्स ऑल. There is a lot more you can do to pamper your car as well. आपकी हर दिन की साथी है वो, उसका ख्याल रखना भी तो जरूरी है. उस रिलेशनशिप में भी तो एफर्ट्स चाहिए रहेंगे मेरी जान. So this is the sign you should visit Valvoline AMTC Premium Quick Service on Salwa Road. क्यों? क्योंकि वहां पे आपको genuine Valvoline products मिलेंगे, प्रीमियम फिल्टर्स मिलेंगे और एक स्मार्ट डिजिटल कार पासपोर्ट जो कि आपकी सारी सर्विस हिस्ट्री को रेडी रखेगा जब भी आपको चेक करना हो. सो दैट्स अमेजिंग, राइट? एंड एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. तो सिर्फ कहना कि अरे मेरी कार मुझे बहुत अजीज है, उससे बेटर एक्शंस में दिखाओ ना, वैल्वोलिन एएमटीसी प्रीमियम क्विक सर्विस पर जाकर. नाउ नोट द नंबर 7765595 7765 5954. यहाँ कॉल करें और बताएं कि मुझे मेरी कार को पैम्पर करना है, क्या क्या ऑफर्स हैं. तनीषा ने कहा था कॉल करने के लिए. और वहां जाकर जब भी आप ऑयल चेंज करवाएंगे ना, यू विल गेट अ गिफ्ट. यस, तो फटाफट से जाइए, चेकआउट कीजिए और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: Olive Short Break. Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
3: गुलराज सिंह
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
3: जियो बिंदास.
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
6: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.

0: निशा
1: शंकर महादेव और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में पुकार मूवी से सेरा ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर और बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेक की जी। सो व्हाट्सएप लेकर आया है कुछ नए फीचर्स फॉर ऑल द पीपल हु आर वर्किंग एंड यूजिंग व्हाट्सएप ऑन देयर ब्राउजर्स लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं। तो भाई क्रोम में नई चीजें ऐड कर दी उन्होंने लाइक क्रोम के व्हाट्सएप के लिए बेसिकली कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन है वे यू कैन मूव एन एक्टिव कॉल ग्रुप कॉल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। लाइक अगर आप फोन पे यूज कर रहे हैं तो आप उसको लैपटॉप पे मूव कर सकते हैं और लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो आप उसको फोन पे मूव कर सकते हैं विदाउट हैंगिंग अप। यस और वेटिंग रूम का ऑप्शन आ गया है कि अगर आपको किसी ग्रुप कॉल में ऐड किया गया है या फिर आप ऐड होना चाहते हैं तो देयर विल बी अ वेटिंग रूम ओनली व्हेन द पर्सन विल परमिट यू टू कम और जॉइन तभी आप उसे जॉइन कर पाएंगे। वाओ हु इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स। बैकग्राउंड नॉइस सप्रेशन सो दैट आपके जो कॉल्स हैं क्योंकि आजकल मोस्टली मीटिंग जूम से मूव होकर व्हाट्सएप पे आ चुकी है तो इसीलिए आई थिंक दे हैव ब्रॉट ऑल दीज ऑप्शंस और फीचर्स फॉर अस कि कीजिए मीटिंग लगे रहिए मीटिंग करने में। तो या दीज आर दी फीचर्स और इंस्टाग्राम पे भी कुछ कुछ नया नया हो रहा है बताऊंगी मैं थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड जी बिंदास।
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio All Over 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड मैंने आपको याद दिलाना था कि रेडियो ऑल ओवर डॉट क्यू इज द हैंडल. ठीक है, अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो एक बार फिर से यू नो टेलिंग यू, जाओ फॉलो कर लो. वी की पोस्टिंग थिंग्स ओवर देयर, कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं. यू नेवर नो, यू माइट विन समथिंग एक्साइटिंग मेरी जान. आई जस्ट डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन एनीथिंग, दैट इज व्हाई. ठीक है, बाकी वी की पोस्टिंग फन वीडियोज ओवर देयर. अगर हमने कुछ एक्सप्लोर किया है हम वो भी वहां पर पोस्ट कर रहे हैं, तो आप चेकआउट कीजिए. आपकी वीकेंड प्लान्स बन सकते हैं शायद उन्हें देखकर. You know, you're getting the point. Yes, sab kuch sorted idhar. RadioOlive.q is the handle. Instagram, Facebook, YouTube par bhi hai hum. You can see, watch the full interviews, you know, jo choti snippets aapko Instagram pe dikhti hain, wo aapko full interviews YouTube pe mil jayenge. Aap check out kar sakte hain. Aur bahut badhiya-badhiya conversations hain usme, you know, आज के जमाने की. वट एवर वी नीड टू नो राइट नाउ कि किस तरह से द वर्ल्ड इज वर्किंग, द मार्केट्स आर वर्किंग. बहुत क्रेजी पॉडकास्ट हैं, वहाँ पे जाके चेकआउट कीजिए और फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए. और फिलहाल भेज रही हूँ बहुत सुंदर गाना जावेद अली साहब की आवाज़ में. ऐसे मैं सेंटिमेंटल हो जाती हूँ इसको देख के ना, सौदेबाजी आक्रोश मूवी से. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: OLF शॉर्ट ब्रेक।
0: हैला जादू
2: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
3: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
3: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
4: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Tanisha. अमेरिकन और अलका याग्निक की आवाज में गुलाब मूवी से आती है खंडाला ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है मेरी जाने का. मेरी जान मिलते हैं कल सुबह 6 बजे. खुशियां ही खुशियां क्योंकि थर्सडे का दिन और जुलाई भी खत्म हो रहा है भाई साहब. धक धक होने लग जाता है इसे सोच के क्योंकि अगस्त में बर्थडेज ही बर्थडेज है. बहुत सारी पार्टीज. यस एंड टू द पीपल जिन्हें ये शिकायत है मुझसे कि भाई मैं उनके पसंद के गाने नहीं चला रही हूँ, तो मेरी जान सबको केटर करना पड़ेगा. आपकी पसंद का भी आएगा, दूसरों की पसंद का भी आएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा ना. और साथ में इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू. कीप मैसेजिंग 3311063 पर. दिल खुश हो जाता है आपके मैसेजेस देख के. हाँ जी, बाकी फॉलो कर लो radio.qsd हैंडल इफ यू हैवंट सो फार. और अपना ढेर सारा ख्याल रखो मेरी जान, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो. समझ रहे हो बात को? हाँ जी. और सुनते रहो रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है कि 90s बॉलीवुड के रोमांस जैसा रोमांस अब जो है आना मुश्किल है, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, यू नो क्रिंज हो ही जाता है। वेलकम टू गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है हम बातचीत कर रहे हैं एंड काम कर रहे हैं। अब देखिए यार, मैं तो जो है अपनी उंगलियों पे दिन गिनती रहती हूँ कि संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूजडे हो गया, वेंसडे आ गया, अब बस एक और दिन काम करना है फिर छुट्टी। क्या आप भी ऐसे मेरी तरह गिनते रहते हैं ताकि आप जो है अपना फेवरेट काम कर सके, यानी कपड़े धोना, घर साफ करना, अलमारी जमाना। मैं तो जो है सुबह उठती इस थॉट के साथ हूँ कि आज जो है शाम तक मुझे क्या क्या काम निपटाने हैं, और बेड पे मैं जाती हूँ ये सोचते हुए कि आज क्या क्या काम जो सोचे थे वो नहीं कर पाई। लेकिन देखिए गाइज, पॉजिटिविटी ढूंढनी है हमें हर चीज में। आपको ये सोचना है कि एटलीस्ट आपने अच्छा करने का सोचा, तो होना नहीं होना वो तो काम के ऊपर है ना, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने सोचा, आपने ये जो है अपने दिमाग में आप ये थॉट लेकर आए कि आज मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है। धीरे धीरे करके एक दो साल में वो प्रोडक्टिविटी काम आ जाएगी। फिलहाल देखिए यार, मेरा जो काम है वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं जाती हूँ घर पे, वहाँ पे जो है थोड़ा चिल करने के बाद कोई एक सीरीज अभी मैंने देखनी शुरू किया है उसे लगा देती हूँ, एंड वो देखते देखते मैं इतनी इंडल्स हो जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि वक्त जो है वो कितना हो गया है, एंड अगर मैं सोऊंगी नहीं तो सुबह उठ नहीं पाऊंगी। सो उस सीरीज का नाम है मुसाफिर कैफे, एंड जैसे कि आपको पता है कि मैं भोपाल से हूँ, एंड अगर आप अपना शहर स्क्रीन पे देख लो तो आपकी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। सो बस वही कुछ हाल मेरे साथ हुआ था। सो फिलहाल मुसाफिर कैफे से एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, गाने का नाम है काफी है। सो फिलहाल ये जो ट्रैक है इसे एंजॉय करके वापस आओ, उसके बाद बातचीत जो है वो जारी रखेंगे कि मौसम का हाल कैसा हो रहा है और क्या क्या देखा मैंने मुसाफिर कैफे में। स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

इस गाने के चलते हुए कौन है इंसान जो अपने आप को ग्रूव करने से रोक पा रहा है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं रुक पा रही हूँ। मुझे जो है अपने आप को बहुत संभाल के माइक के सामने रखना पड़ रहा है, वरना मैं तो इधर उधर इधर उधर इधर उधर यू नो ऐसे डांस कर रही हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है देखिए हम काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एंड ऐसे ही बातचीत करते हुए मुझे ऐसा लगा कि यार मौसम की बात कर लेनी चाहिए। अब देखिए कल जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मैं बाहर निकली मुझे ऐसा लगा यार शाम हो रही है, क्योंकि थोड़ी सी बदली छाई हुई थी, ह्यूमिडिटी और गर्मी अपनी जगह इंटैक्ट थी लेकिन लाइट थोड़ी सी कम लग रही थी, थोड़ी सी डिम डिम सी लग रही थी। लेकिन आज बैक टू नॉर्मल आ चुके हैं हम। 38 डिग्री सेल्सियस दोहा में इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है, आज का हाइएस्ट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो देखिए यार इस भीषण यू नो हीट में आपको क्या करना है, आपको जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पीना है, अंदर रहना है, जब धूप थोड़ी सी कम हो जाए तभी बाहर निकलना है, जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाहर निकलना तो बीच में जो है हाइड्रेशन वाली ड्रिंक्स जो है वो आपको पीती रहनी है। यानी आप नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, पानी सिंपल वाला सबसे बेस्ट है। वैसे देखिए यार बहुत सारे लोगों का जो है बर्थडे अगस्त में आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी कि मेरे रिलेटिव्स में मेरे ऑफिस में कितने सारे लोगों का बर्थडे जो है वो अगस्त में आ रहा है, एंड सबका यू नो बर्थडे याद रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। मैंने कल ही किसी से बर्थडे पूछा था और आज मैंने उन्हें बताया कि हाँ आपका बर्थडे तो 7th को आ रहा है ना, 7th अगस्त को, उन्होंने बोला नहीं 8th अगस्त को आ रहा है। सो डेट याद रखनी भी बहुत यू नो ऐसे टफ काम हो रहा है, लेकिन व्हाट्सएप जो है अब इस काम को आसान बनाने वाला है, क्योंकि व्हाट्सएप ने ये फैसला लिया है कि अब वो बर्थडेज आपको याद दिलाएगा। यानी जैसे फेसबुक पे आपको नोटिफिकेशन आता था कि ओ इट्स हिज बर्थडे, इट्स हर बर्थडे विश, वैसे ही जो है व्हाट्सएप भी अब आपको याद दिलाएगा। सबसे बेस्ट है क्योंकि व्हाट्सएप पे ही वो लोग हैं जिन लोगों को हमें बर्थडे विश करना होता है। सो कंग्रेचुलेशंस, अगर आपकी मेमोरी कमजोर थी तो टेक्नोलॉजी जो है आपके लिए ही काम कर रही है शायद। फिलहाल एक बहुत ही बेहतरीन वाला गाना, मतलब ये मेरा सोल सॉन्ग है। अगर मेरे लाइफ के बैकग्राउंड में जो कुछ गाने चल सकते हैं उनमें से ये जो है एक सबसे बेस्ट गाना है। सो आयशा मूवी से जो है सुनो आयशा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। ओ माय गॉड कितना प्रिटी गाना है ये। ठीक है मैं अपनी खुशी को थोड़ा कंट्रोल करती हूँ, आप ये जरा गाना सुन के वापस आइए, उसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है उस पर। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं.

0: लखनऊ सेंट्रल का ये गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर. एंड यार आज प्लेलिस्ट को क्या हो गया है, एकदम चुन चुन के अमेजिंग अमेजिंग गाने जो है वो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है. जहाँ पर लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं. अब देखिए यार, स्ट्रेस तो आपको हो ही जाता है, आई नो, लेकिन स्ट्रेस काफी कम हो जाता है अगर आप जर्नलिंग जैसी एक्टिविटीज जो है वो करते हैं. तो आज स्ट्रेस बस्टर वाले सेगमेंट में हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं जो आप करते हैं तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है. जर्नलिंग उनमें से एक है. अब अगर आपको जो है ऐसे कटिंग पेस्टिंग स्क्रैप बुक खरीदना और उसे संभालना इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो अब आप जो है अपने फ़ोन में भी काफ़ी सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जिन पर आप जर्नलिंग कर सकते हैं. सो बस देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे पहले के टाइम पे जो है, या हो सकता है अभी भी कुछ लोग करते हों, लोग डायरीज लिखा करते थे. लोग जो है अपने पूरे दिन का ब्यौरा जो है वो एक जगह पे लिखते थे. बस वही करना है आपको. जर्नलिंग भी होती है वैसी, लेकिन उसमें आप टेक्स्ट की जगह कुछ एलिमेंट्स जो है अपने पूरे दिन से वो आप उस जर्नल में ऐड करते हो. वो किसी कैफे का टिश्यू हो सकता है, वो किसी जगह पे उठाया हुआ कोई पत्ता हो सकता है, कोई फूल हो सकता है, या किसी कैंडी का रैपर हो सकता है, या किसी यू नो फेवरेट इंसान का दिया हुआ रुमाल हो सकता है. बस आपको उसके कुछ कुछ पीसेस जो है वो जर्नलिंग में ऐड करने होते हैं. और इसी को आप डिजिटली भी कर सकते हैं उन चीज़ों की फ़ोटोज़ ऐड करके. एंड फिर जब आप पास्ट में जाएंगे एंड उन्हें स्क्रोल करके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. अब देखिए इसमें स्ट्रेस जो है वो कैसे कम होता है. सबसे पहले तो ये जो है एक बहुत ही टाइम टेकिंग एंड बहुत ही सूदिंग सी एक्टिविटी है जिसमें आपको काफ़ी यू नो इंटरेस्ट आएगा. एंड वहीं जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि यार मेरे पिछले दिन कितने अच्छे थे या मैंने कितने हार्डशिप्स जो हैं वो देखी हैं तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा. फिलहाल एक और बहुत ही अमेजिंग और मेरा करंट फेवरेट गाना गुलाबी साड़ी लाली लाल लाल आ रहा है आपकी रेडियो सच पर संजू राठौड़ की आवाज़ में. धमाल 4 का ट्रैक है, इंजॉय करो और फटाक से वापस आ जाओ.
1: Radio Olive Bar.
2: Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh.
1: Fresh song of the hour.
2: Ye gana.
0: मैं हूँ आपकी कशिश और स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Hi, this is Kailash Kher and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: आई डोंट नो आप लोग मुझसे कितना अग्री करोगे या मुझसे कितना ज्यादा डिसएग्री करोगे कि शाहरुख खान जो बाजीगर और इस टाइम पे जो लगते थे वो मुझे ऐसा लगता है वो बेस्ट लगते थे. चमत्कार, कभी हाँ कभी ना, बाजीगर, ये वो पीक टाइम था जब शाहरुख खान सच में चार्मिंग थे. अभी भी ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अभी नहीं है, बट तब ज्यादा थे. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए हम बातचीत जो है वो कर रहे हैं. अब देखिए यार, हो ये रहा है कि जेंजीज को ना सारी पुरानी चीजें पसंद आ रही है. जैसे अभी मैंने कहा कि मुझे जो है वो पुराने वाले शाहरुख खान ज्यादा अच्छे लगते हैं, वैसे ही जेंजीज जो है अब धीरे धीरे करके पुरानी चीजों पर वापस जा रहे हैं. उन्हें चेस खेलना पसंद आ रहा है, वो फोन को जो है वो रिप्लेस करके अब यू नो आईपॉड पे गाने सुनना पसंद कर रहे हैं जिसमें और कोई स्क्रीन ना हो, और ऐसे ही जो है अब बहुत सारी चीजें बदल रही हैं. तो मैं आज जितने भी मिलेनियल्स हैं इस वक्त या बूमर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे बस यही जानना चाहती हूँ कि और ऐसा कौन सा ट्रेंड है या ऐसी कौन सी चीज है जो धीरे धीरे करके वक्त के साथ जो है फेड आउट हो गई है, लेकिन आप चाहते हो कि जेंजीज एक बार उसे ट्राई करें क्योंकि वो फन तो था. देखो, टेक्नोलॉजी कभी उस फीलिंग की जगह नहीं ले पाएगी. एक जो है वाकया अभी मेरे साथ हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन थोड़ी सी देर में. तब तक आप जो है अपना फोन उठाइए और मुझे मैसेज कीजिए 3311063 पर, और ये बताइए कि ऐसा कौन सा ट्रेंड है पहले का, ऐसी कौन सी चीज है जो अभी वाली जनरेशन को जो है ट्राई करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा फन थी. फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आर आर आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑल पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ

एक बात तो देखो कहनी पड़ेगी, जेंजीज जो है वो जैसे जैसे एआई से गाने बनवा रहे हैं वैसे वैसे जो है पुराने मतलब गानों की तरफ लौट कर भी जा रहे हैं। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त से लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। अब देखिए यार, आज का जो है हमारे डिस्कशन का जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो यही है कि जेंजीज जो है वो लौट कर उन ट्रेंड्स पे जा रहे हैं जो काफी साल पहले हुआ करते थे, जैसे आईपॉड पर गाने सुनना, रेडियो सुनना, एंड उसके साथ पेपर वाली जो बुक्स है मतलब डिजिटल बुक्स से हटकर नॉर्मल बुक्स जो है वो पढ़ना, चेस खेलना, इन सब चीजों पर अब जेंजीज जो है वो वापस लौट कर जा रहे हैं। एंड अब उन्हें कैसेट पे गाने सुनना एंड एक स्पीकर पे रेडियो सुनना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि ऐसे और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि जेंजीज या जो इस वक्त की जनरेशन है, जेन अल्फा है, वो करे एंड वो एक्सपीरियंस करके देखे। सो अगर हम बात करें तो हमें जो है सानिया जी ने एक मैसेज लिखा है, उन्होंने लिखा है कि हाई कशिश, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। देखिए एक तो लेडीज हो गए, आपने जो अपनी एज बताई है, वेरी नाइस। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि वो चाहती है कि बच्चे जो है जितने भी जेंजीज हैं वो अब ज्यादा ग्राउंड पे खेलें एंड ज्यादा से ज्यादा जो है वो बाहर टाइम स्पेंड करें, पिट्टू गरम और ऐसे कुछ गेम जो हम बचपन में खेला करते थे वो खेले एंड अपना जो चाइल्डहुड है वो वेस्ट ना करें। वैसे सानिया जी आपने बात बिल्कुल सही करी है, बाहर खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड चाइल्डहुड को जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक रियलिटी चेक मैं खुद को और आप सबको देना चाहती हूँ कि जितने भी जेंजीज इस वक्त मौजूद है वो सब या तो मतलब अपने स्कूल के मतलब हायर स्कूल स्कूलिंग पर है, कॉलेजेस में है, या फिर वो काम कर रहे हैं, वो अब कॉरपोरेट में एंटर कर चुके। तो जेंजीज की अब खेलने कूदने की उम्र जो है वो जा चुकी है, लेकिन फिर भी जो आपने कहा है कि आउटडोर एक्टिविटीज जो है वो बढ़ानी जरूरी है। एंड बहुत सारे लोग का और भी हमारे पास मैसेज जो है वो आया हुआ है एंड इसमें लिखा हुआ है कि उन्हें हम्बल रहना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बात तो है, मतलब जैसे जैसे कुछ आदतों के साथ हमें हमारे जो आगे की जनरेशन है उन्हें हमारी वैल्यूज भी जो है वो आगे पास ऑन करनी चाहिए, जो कि ऐसा लग रहा है टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी गायब होती जा रही है। अब एक चीज जो मैं आपको बताने वाली थी कि यार मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, सो आज मैं अपने ऑफिस के लैपटॉप पे काम कर रही थी एंड अचानक से काम करते करते ना राइट हैंड साइड एक बटन था उसमें मेरा हाथ लग गया एंड अचानक से लैपटॉप में से आवाज आई हूं करके एंड उसमें से एक एक फ्लैप बाहर आ गया एंड मुझे लगा ये क्या हो रहा है, मेरा लैपटॉप टूट गया, मेरा ऑफिस का लैपटॉप था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये कहीं देखा है मैंने बचपन में। सो वो जो था वो सीडी डिस्क की जगह थी एंड वो ऐसे बाहर आया एंड वहां पे आप सीडी या डीवीडी रख कर जो है आप उसमें कुछ भी प्ले कर सकते हो। सो मेरे लिए ये मैंने जो चीज है ये मैं जब बहुत छोटी थी तब मैंने स्कूल के कंप्यूटर लैब में जब हमें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जाता था ना तब पढ़ाया था, उसके बाद ये गायब ही हो गया। मतलब मैंने सिर्फ इसे टेक्स्ट बुक में देखा, उसके बाद पेन ड्राइव एंड एसडी कार्ड्स ने इसकी जगह ले ली। कितना कूल लगता होगा ना एक सीडी डिस्क को जो है यूज करना, इट्स सो कूल। आजकल उससे क्राफ्ट होते हुए, डीआईवाई होते हुए मैं देख रही हूँ। सो कुछ ऐसी चीजें और भी अगर आपके दिमाग में आ रही है, जहन में आ रही है, जो अब जेंजीज को जो है वापस ट्राई करनी चाहिए, तो वो आप हमें बता सकते हैं 3311063 पर। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला क्यूट सा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ

0: देखिए जी, पालकी में सवार होके जाने के जो टाइम है वो अब जा चुका है। अब लोग जो है वो पालकी में नहीं गाड़ियों में जाते हैं, और इसीलिए इतनी दूर दूर जब गाड़ी से जाना है तो गाड़ी की हेल्थ का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए जो है लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है हम बातचीत कर रहे हैं। सो देखो यार गाइस, एक सच बात बताओ कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ट्रूली पैम्पर्ड योर कार। मतलब आप अपने लाइफ के कुछ लोग जो होते हैं बहुत आपको जो ऐसे मनपसंद होते हैं उनको तो काफ़ी बार जो है अच्छा यू नो ट्रीटमेंट दे देते हो, लेकिन वो कार जो आपके अच्छे में, आपके बुरे में, आपकी लॉन्ग ड्राइव में, आपके ऑफिस में, हर जगह आपके साथ जाती है, उसका ख्याल कितना रखते हो। हम रोज़ अपनी गाड़ी को जो है वो दौड़ाते रहते हैं और फिर उसी की केयर जो है वो अक्सर करना भूल जाते हैं। इट्स टाइम टू गिव योर कार अ लव दैट It deserves. So straight away पहुंचो Valvoline AMTC Premium Quick Service पर जो है सलवा रोड पर, एंड स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो है ये बेस्ट जगह है। सो देखिए 150 years का इनको ग्लोबल ट्रस्ट है इन पर, एंड यहाँ आपको मिलेंगे जेन्युइन Valvoline प्रोडक्ट्स और प्रीमियम क्वालिटी फिल्टर्स। और सबसे कूल चीज बताइए आपको, इनके पास जो है ANPR पावर्ड डिजिटल कार पासपोर्ट भी है, जिससे आपकी गाड़ी की पूरी सर्विस हिस्ट्री जो है वो हमेशा आपके फिंगर टिप्स पे रहेगी, यानी नो पेपर वर्क और नो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन। सो देखिए यार, ये सही वक्त है अपनी गाड़ी को पैम्पर करने का और वो यू नो उन्हें फेवर रिटर्न करने का आपकी कार को, जो वो हमेशा आपके लिए करती है। सो देखिए यार, वेट बिल्कुल मत करो, अपनी कार को जो है प्रीमियम केयर देने के लिए अभी जाओ, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है कॉल कर सकते हैं 7765954 पर, 7765954 पर। जल्दी से जाइए एंड इस पे कॉल कर लीजिए। एंड आपको एक सीक्रेट बात बता देती हूँ जस्ट, क्योंकि आप लोग मेरे दोस्त हो, आपको कुछ अमेजिंग चीजें जीतने का मौका भी मिलेगा। सो इन गुडीज के लिए जल्दी से जाइए, कॉल कीजिए एंड अपनी कार को जो है पैम्पर कीजिए। फिलहाल आपको पैम्पर करते हुए एक अमेजिंग वाला ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Song of the Hour. Yeah, guys.

ऐसे कैसे अजनबी बन जाए यार, आपका और मेरा कितना लंबा चौड़ा साथ है और हर रोज बातचीत करते हैं, ऐसे रोज बातचीत करने वाले लोग अजनबी कहाँ कहलाते हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए ले आई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए बस आपसे बातचीत में कर रही हूँ। अब देखिए यार, क्या होता है ना कि हम जो है कई बार पुराने फैशन को ना ऐसा सोचने लग जाते हैं कि यार या तो ये बहुत ही बोरिंग है या तो यार ये पहनूंगी तो लोग क्या समझेंगे। ऐसे ही एक ट्रेंड है जिसे काफ़ी कैटेगराइज कर दिया गया है कि यार ये तो काफ़ी बोल्ड है, इसको तो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ही कैरी किया जा सकता है, एंड दैट इज़ एनिमल प्रिंट। यानी कोई भी चीज़ जिसपे एनिमल स्किन का प्रिंट होता है वो लोग जो है काफ़ी बार उसे पहनने में काफ़ी यू नो हिचकिचाते हैं कि यार ये तो काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट हो जाएगा, लोग जो है पता नहीं क्या कहेंगे, एंड इसके लिए तो काफ़ी कॉन्फिडेंस चाहिए। देखो कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनिमल प्रिंट इस वक्त इतना इन ट्रेंड चल रहा है कि अगर आप जो है इसे पहनते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आपको इतने मिलेंगे। हाँ जी, तो फैशन वाले सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं एनिमल प्रिंट्स की, जो काफी इन है इस वक्त, एंड आज टाइगर डे है, सो हम इस पर बात कर रहे थे यार कि टाइगर के जो प्रिंट्स होते हैं ना उसकी स्किन पे, वो हमेशा हर टाइगर पे अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे लिए हमारे फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिटी है, वैसे उनके लिए जो है उनकी स्किन पे बना हुआ ये जो पैटर्न है ये एक अलग आइडेंटिटी है। सो देखिए, जब एक हमारा यू नो मेन कैरेक्टर एनिमल जो है वो जंगल में अपनी अलग आइडेंटिटी लेके घूम रहा है, तो आप क्यों नहीं इससे थोड़ा सा फायदा ले लेते, एंड क्यों नहीं एक अमेजिंग वाला जो है एनिमल प्रिंट ड्रेस जो है वो ले लेते। ऐसे देखिए, सिर्फ ड्रेस की बात नहीं है, आप एनिमल प्रिंट को कहीं भी अकोमोडेट कर सकते हैं, चाहे आप एक छोटा सा बैग जो है वो एनिमल प्रिंट वाला ले लें, अपना फोन केस जो है वो एनिमल प्रिंट वाला ले लें, ड्रेस शर्ट एक स्कार्फ भी अगर एनिमल प्रिंट में आपने ले लिया और उसे अपने यू नो आउटफिट का पार्ट बना लिया, क्लासी लगोगे आप। सो फिलहाल देखिए, इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास
2: टाइम चेक
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: दानादल पहाड़ द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुकवाकिफ अलखोर।
3: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:11 एंड दैट इज 12:11। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
4: जॉय अलुकास ब्रिंग्स यू द जॉय ऑफ समर। द कूलेस्ट डील्स ऑन ज्वेलरी परचेसेस फॉर दिस समर आर हियर। फ्री कैश वाउचर्स ऑन योर डायमंड ज्वेलरी परचेसेस 3.99% ऑनवर्ड्स अश्योर्ड लोवेस्ट मेकिंग चार्जेस एंड 0% डिडक्शन ऑन ऑल गोल्ड एक्सचेंज एंड मच मोर ओनली एट जॉय अलुकास। प्लानिंग अ ट्रिप टू इंडिया, मेक इट इवन मोर रिवॉर्डिंग विद अप टू 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
5: iRadio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: उफ उफ उफ, मतलब उफ के अलावा अगर और कोई शब्द होता है तो वो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते 3311063 पर कि इस गाने को क्या मतलब सुन के क्या फील हुआ है, उसको कैसे एक्सप्रेस करूं मैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहां पर लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है हम काम कर रहे हैं। अब देखिए यार, जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो या तो इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे, फेसबुक यूज़ करते होंगे, व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे एंड कुछ लोग होंगे जो स्नैपचैट भी यूज़ करते होंगे। सो स्नैपचैट यूज़ करने वालों के लिए स्पेशली एक नया फीचर जो है वो लॉन्च किया गया है, जहां पर आप अगर आपने मतलब इमेजिन कीजिए, आपको मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना जो है वो मैंने सुनाया एंड आपके वो फिर ना दिमाग में ऐसे चलने लग गया, तो आप हर जगह वही वही गाना सुन रहे हो बार बार रिपीट पे एंड उसके बाद जो है आपको अब वो गाना शेयर करना है। सो आप अब लाइव टाइम पर जो है गाने जो भी अभी आपके फेवरेट गाना चल रहा है वो आप स्नैपचैट पर शेयर कर सकते हो लोगों से। वैसे देखिए स्नैपचैट पे आपको रेडियो ऑलिव भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह मिल जाएगा, तो जल्दी से जाओ यार, फॉलो बटन दबा दो और हम सब के अमेजिंग वाले कंटेंट को जो है अपना बहुत सारा प्यार दो। देखो बहुत मेहनत लगती है कॉन्टेंट बनाने में, अगर नहीं यकीन हो रहा तो एक बार बना के देखो और फिर मुझे जो है टैग कर देना उसमें। आई वॉन्ट आप लोग भी कंटेंट बनाओ यार, मैं भी देखूंगी आपका कंटेंट। फिलहाल 3311063 पर आकर आप जो है हमें बहुत सारी प्यारी प्यारे मैसेजेस कर सकते हैं। आने के बाद मतलब अभी हम जा रहे हैं गाने की तरफ, वहां से वापस आने के बाद हम बात करेंगे कि आज किसका हावी वाला बर्थडे है। सो स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ एंड फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर इंतजार कर रहा है आपका। सो इस गाने को एंजॉय कीजिए एंड मुझे जो है अपने दिमाग में रख कर जरा ये गाना सुनना, ठीक है? स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ

0: 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस

बॉलीवुड का वो टाइम भी बढ़िया था ना, जब एक सटल तरीके से मूवी का नाम जो है हर गाने में ऐड किया जाता था, या फिर एक फुल ऑन एनर्जी वाले गाने के बीच में जो है उस मूवी की जो प्यारी सी मेलोडी है या बैकग्राउंड म्यूजिक है वो स्लो मोशन में ऐड कर देते थे। आ हा हा, मजा ही आ जाता था। लेकिन अब वो वक्त जो है कहाँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है हम बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए यार, अगर आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है तो आप ना बहुत ही कमाल के इंसान हो, क्योंकि आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ अपना बर्थडे शेयर कर रहे हो जो कि मतलब ऑन अनदर लेवल है। मतलब एक बात बताओ, उस इंसान के बारे में क्या कहा जा सकता है जिसका दुनिया में रहते रहते उसकी बायोपिक बन जाए एंड लोग इतना ज्यादा प्यार करें एंड लोग जो है उनके टैलेंट की दुहाइयां दें एंड कितने ही लाइफ में उनके अप्स एंड डाउन्स आए लेकिन उनका जो बॉलीवुड में स्तर है वो हमेशा सबसे ऊपर रहा है। एंड बॉलीवुड के बाबा संजू बाबा जो है आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे है, तो उन्हें विश करते हुए उनका एक अमेजिंग वाला गाना जो है वो अभी हम सुनने वाले हैं। सो इसे आप इंजॉय कीजिए एंड अगर आपके भी किसी दोस्त का बर्थडे आता है तो यार मुझे मैसेज कर दो 3311063। अगर मैंने आपका मैसेज वक्त पे पढ़ लिया तो हो सकता है हम उन्हें हैप्पी वाला बर्थडे विश कर दें। बाकी अगर आपका बर्थडे है सो हैप्पी बर्थडे। फिलहाल संजू बाबा का 67th बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए एक बहुत ही अमेजिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: स्टोरी ऑफ द डे, स्टोरी ऑफ द डे,
1: स्टोरी ऑफ द डे। अगर आप जंगल में खड़े हैं और अचानक से सब कुछ खामोश हो जाए तो डरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जंगल की खामोशी अक्सर बताती है कि टाइगर आसपास है। और सबसे हैरान करने वाली बात, टाइगर की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, लेकिन उसके पंजों की आहट शायद आप कभी भी नहीं सुन सकते। उसकी चाल भी खामोश होती है, जंगल को उसके आने का एहसास होता है, आवाज नहीं। और एक और राज, दुनिया में दो टाइगर कभी एक जैसे नहीं होते। उनकी स्ट्राइप्स सिर्फ फर पर नहीं, उनकी स्किन पर होती है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स की तरह। इसीलिए कहते हैं, टाइगर को देखना सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं, वाइल्ड की असली लाइफ देखना है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: इस वीकेंड का क्या प्लान है?
2: सफारी हाइबर मार्केट जाना है, कार लेने.
1: कार लेने सफारी में?
2: और क्या, सफारी हाइबर मार्केट इजदान मॉल गराफा का एक्सपेंडेड शोरूम की इनॉग्रेशन जुलाई 30th को है और कतर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है ये. एक्सपेंडेड आउटलेट इनॉग्रेशन के लिए MG3 2026 मॉडल कार जीतने का मौका. बस विजिट एंड विन. सिर्फ सफारी आउटलेट विजिट करो, विदाउट एनी परचेस यू विल गेट अ कूपन एंड यू कुड विन अ MG3 car. Promotion starts from July 30th to August 12th. Lucky draw on August 13th.
0: Safari, world-class shopping experience. Doha, Qatar.
3: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.

0: देखिए इश्क जैसा कुछ तो मुझे भी फील हो रहा है, लेकिन क्या आपको फील हो रहा है? 3311063 पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए ना लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा आपकी लाइफ को मस्त बनाने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर सेम जगह पर, लेकिन थोड़े और फन बातों के साथ। यानी फैशन की बात करेंगे, मूवीज की बात करेंगे कदर में क्या कुछ चल रहा है सब पर, लेकिन कल। फिलहाल देखिए, अगर आपको इस बीच में मेरी याद सताए तो आप जो है सिंपल से रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर आ सकते हैं, और वहां पर हम सब ही आरजेज आपके लिए पलके बिछा कर बैठे हुए हैं, आपके लिए कंटेंट पे कंटेंट जो है वो पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप है कि फॉलो ही नहीं कर रहे। सो जल्दी से जाइए फॉलो कीजिए एंड अमेजिंग वाला कॉन्टेंट जो हमने बनाया हुआ है वहां पे उसे जाकर शेयर कर दीजिए। फिलहाल जाते जाते आपको ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो मैं सुना रही हूँ, सो इस गाने को एंजॉय कीजिए और बाकी मुझे याद रखिए। बाकी जाते जाते तो वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: इस वीकेंड का क्या प्लान है?
2: सफारी हाइपर मार्केट जाना है कार लेने।
1: कार लेने सफारी में?
2: और क्या, सफारी हाइपर मार्केट इज़दान मॉल गराफा का एक्सपेंडेड शोरूम की इनॉग्रेशन जुलाई 30th को है और कतर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है ये। एक्सपेंडेड आउटलेट इनॉग्रेशन के लिए MG3 2026 मॉडल कार जीतने का मौका, बस विजिट एंड विन। सिर्फ सफारी आउटलेट विजिट करो, विदाउट एनी परचेस यू विल गेट अ कूपन एंड यू कुड विन अ MG3 car. Promotion starts from July 30th to August 12th. Lucky draw on August 13th.
3: Safari, world-class shopping experience. Doha, Qatar.
4: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
5: This is Deepika Padukone.
6: Deepika Padukone.
5: Radio Olive 106.3.
7: I'm in number one. Radio Olive.
8: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
9: Olive Music Marathon. 1 ghanta. 1 ghanta. Non-stop back-to-back gaane.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: अरे इस वीकेंड का क्या प्लान है?
1: सफारी हाइपर मार्केट जाना है कार लेने।
0: कार लेने सफारी में?
1: और क्या, सफारी हाइपर मार्केट इज़दान मॉल गराफा का एक्सपैंडेड शोरूम की इनॉग्रेशन जुलाई 30th को है और कतर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है ये। एक्सपैंडेड आउटलेट इनॉग्रेशन के लिए MG3 2026 मॉडल कार जीतने का मौका, बस विजिट एंड विन। सिर्फ सफारी आउटलेट विजिट करो, विदाउट एनी परचेज यू विल गेट अ कूपन एंड यू कुड विन अ MG3 कार। प्रमोशन स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई 30th टू ऑगस्ट 12th। लकी ड्रॉ ऑन ऑगस्ट 13th।
2: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। ये है ऑलिव रिचार्ज और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, अगर बांध रखिए तो टाइट करके बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक जर्नी किक स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो तैयार हो जाइए, अपने मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा सब कुछ। और यही बताते हुए बोलते हुए चलिए शुरू करते हैं ऑल इन रिचार्ज। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: इस वीकेंड का क्या प्लान है?
2: सफारी हाइपर मार्केट जाना है कार लेने.
1: कार लेने सफारी में?
2: और क्या, सफारी हाइपर मार्केट इज़दान मॉल गराफा का एक्सपेंडेड शोरूम की इनॉग्रेशन July 30th को है और कतर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है ये. एक्सपेंडेड आउटलेट इनॉग्रेशन के लिए MG3 2026 मॉडल कार जीतने का मौका. बस विजिट एंड विन. सिर्फ सफारी आउटलेट विजिट करो, विदाउट एनी परचेस यू विल गेट अ कूपन एंड यू कुड विन अ MG3 car. Promotion starts from July 30th to August 12th. Lucky draw on August 13th.
3: Safari, world-class shopping experience. Doha, Qatar.
4: Doctor On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
5: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
4: Doctor On Air. Doctor On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
6: Hello, I'm Neena Gupta.
7: Neena Gupta. Radio.
6: आप सुन रहे हैं Radio Olive 106.3.
3: Olive

भाई छोटी मगर काफी इंटरेस्टिंग खबर हमारे हाथ में लगी है, मैं आपको बता दूं। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे हमें पता चला है कि फ्रांस में इंफोसिस को जो है 1 करोड़ समथिंग का एक फाइन लगाया है। रीजन ये है कि वो लोग बहुत ज्यादा काम करवा रहे थे, वर्क लाइफ बैलेंस के जो भी नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे थे, रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे थे। और इन्होंने बोला कि भाई देखो ये इंडिया नहीं है जहाँ पे तुम ऐसे काम करवा सकते हो, यहाँ पे थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस है करके, और फाइन लगा दिया इन्फोसिस पे। वो सुन के काफी अच्छा लगा मुझे, मगर एक बात का मुझे बहुत दुख है। दुख ये है कि यार फाइन बहुत कम हो गया, 1 करोड़ तो बहुत कम है उनके लिए, थोड़ा ज्यादा लगाना चाहिए था। ये मैं ही नहीं, आप उस पोस्ट के नीचे के जो कमेंट्स है जाके चेकआउट करोगे ना तो यही मिलेंगे। उसके साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ जरा शेयर करना चाहूंगा, अभी नहीं थोड़ी देर में, क्योंकि गाने यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं।

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। याद है बचपन में जब हम दुकान में सामान लेने जाया करते थे और सामान खरीदने के बाद जब बैलेंस मिलना होता था तो दुकानदार हमें टॉफी पकड़ा देता था। हम खुशी खुशी टॉफी लेकर आ जाते थे। घर में जब आके बैलेंस मम्मी पापा मांगते थे तो हम बोलते थे कि नहीं टॉफी दे दे उन्होंने करके, और घर वाले हम पे गुस्सा होते थे, डांटते थे क्यों बैलेंस क्यों नहीं लेकर आए, अगली बार से बैलेंस लेकर आना करके। उस टाइम पे तो हमें इसका वैल्यू समझ में नहीं आया, मगर बाद में जब हम बड़े हुए, काम करना शुरू किया और वर्क लाइफ बैलेंस मांगने गए मैनेजर से, तो मैनेजर ने भी टॉफी के नाम पे हमें थोड़े पेप टॉक, छोटा सा अप्रेजल, ये सब देना शुरू कर दिया, मगर बैलेंस जो चाहिए था जिंदगी में वो नहीं दिया। और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे वर्क स्पेसेस में ये बात लोग रिलेट कर पाते हैं। एक बैलेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में भी बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लाइफ में भी बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर समहाउ मैजिकली ये चीजें ना कंपनीज भूल जाते हैं। इन चीजों में उनकी याददाश्त थोड़ी कम रहती है, मगर कोई गलती अगर हमने की है तो बहुत लंबे टाइम तक वो याद रहेगी। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

Story of the day. Story of the day. अगर आप जंगल में खड़े हैं और अचानक से सब कुछ खामोश हो जाए तो डरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जंगल की खामोशी अक्सर बताती है कि टाइगर आसपास है। और सबसे हैरान करने वाली बात, टाइगर की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, लेकिन उसके पंजों की आहट शायद आप कभी भी नहीं सुन सकते। उसकी चाल भी खामोश होती है, जंगल को उसके आने का एहसास होता है, आवाज नहीं। और एक और राज, दुनिया में दो टाइगर कभी एक जैसे नहीं होते। उनकी स्ट्राइप्स सिर्फ फर पर नहीं, उनकी स्किन पर होती है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स की तरह। इसीलिए कहते हैं, टाइगर को देखना सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं, वाइल्ड की असली लाइफ देखना है।

0: मैं सारिका आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
1: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: यार मेरा एक कजिन है, सबसे बड़ा कजिन है, तो ये भाई अपनी गाड़ी से जिस तरीके से मोहब्बत करता है ना, वो एकदम देखने लायक है। जिस तरीके से भैया अपने गाड़ी को ट्रीट करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, हम सबके लिए एक एग्जांपल सेट हो चुका है। अब जब भी मैं कार खरीदूंगा तो मुझे पता है कि हाँ मुझे अपने कार का कैसे ख्याल रखना है, कैसे उसका टेक केयर करना है सब। और गाड़ी के ख्याल की बात आ गई तो फिर मैं आपको याद दिला दूं कि भाई आप सीधा जा सकते हैं वैल्वोलिन AMTC जो सलवा रोड पर है, वहां पे जाके आप अपने गाड़ी को एक्सपर्ट केयर दे सकते हैं जो आपकी गाड़ी डिजर्व करती है। वैल्वोलिन के जेन्युइन प्रोडक्ट्स वहां पर हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, ऑयल है जो आप अपने गाड़ी के केयर को एनहांस करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ वहां पे जो एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेंड है ताकि आपकी गाड़ी का ख्याल वो बहुत अच्छे से रख पाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप वहां पे जाके अगर आप ऑयल चेंज कराते हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा वैल्वोलिन का मर्चेंडाइज भी मिलेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई इंतजार किस बात का है, जल्दी जल्दी जाइए। और जाने से पहले हम ऐसे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करने के लिए मैं जो नंबर बता रहा हूँ वो ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? वो नंबर नोट कीजिए और कॉल करते वक्त बोलना ये रेडियो ऑलिव से सुदेव भाई ने बोला था कॉल करने के लिए। तो नंबर है 7765 5954 7765 5954। तो इंतजार किस बात का है, कॉल कीजिए आज और जा सकते हैं सीधा वैल्वोलिन AMTC जो सलवा रोड पर है। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास
1: रेडियो

0: वाओ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
2: इस वीकेंड का क्या प्लान है?
3: सफारी हाइपर मार्केट जाना है कार लेने।
2: कार लेने सफारी में?
3: और क्या, सफारी हाइपर मार्केट इज़दान मॉल गराफा का एक्सपैंडेड शोरूम की इनॉग्रेशन जुलाई 30th को है और कतर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है ये। एक्सपैंडेड आउटलेट इनॉग्रेशन के लिए MG3 2026 मॉडल कार जीतने का मौका, बस विजिट एंड विन। सिर्फ सफारी आउटलेट विजिट करो, विदाउट एनी परचेस यू विल गेट अ कूपन एंड यू कुड विन अ MG3 car. Promotion starts from July 30th to August 12th. Lucky draw on August 13th.
4: Safari, world-class shopping experience. Doha, Qatar.
5: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
6: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
5: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
6: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
5: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई बहुत ही अमेजिंग बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं सीजन में, और आप टेंशन में हैं कि भाई ट्रैवल का कॉस्ट कैसा होगा, क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ आपके मन में एक छोटी सी भी आशंका है तो भूल जाइए, कतर एयरवेज है ना, सब कुछ सही कर देगा। कतर एयरवेज आपके लिए बहुत ही बड़ी ऑफर्स लेकर आए हैं। 20% सेविंग्स आप कर सकते हैं प्रीमियम कैबिन्स में, 25% सेविंग्स कर सकते हैं इकोनॉमी क्लास में, और 50% बोनस एवियोस अक्रॉस ऑल कैबिन्स फॉर प्रिविलेज क्लब मेंबर्स। और उसके साथ साथ ये ऑफर जो है ये 30 जुलाई 2026 के बुकिंग तक ही अवेलेबल है, और ट्रैवल डेट आपका जो है 10th दिसंबर तक हो सकता है, और इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ऑब्वियसली लगेंगे। और यही बात बताते हुए हम जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

यार फाइनली एज अ म्यूजिक फैन, एज एन आतिफ असलम फैन, मैं बहुत खुश हूँ। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। तो मैं आपको जरा कॉन्टेक्स्ट बता दूं, मैं बचपन से आतिफ असलम का बहुत बड़ा फैन हूँ। बॉलीवुड म्यूजिक के लिए ही नहीं बट उनके जो एल्बम्स थे उनके लिए मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। जलपरी हो, दूरी हो, मेरी कहानी हो, ये तीनों एल्बम बहुत ही बढ़िया एल्बम्स थे। और उसके बाद बहुत सालों से जो है आतिफ ने कोई एल्बम नहीं निकाला था, मगर 2007 के बाद आतिफ एक कमबैक करने वाले हैं। वो अपना एक एल्बम निकालने वाले हैं जिसका नाम है सुबह आए ना। इसमें 8 ट्रैक्स होने वाले हैं जिसमें सुन साजना, इश्क, चार यार, सच्चे वादे, ऐसे 4 गाने भी होने वाले हैं। और आतिफ ने बताया कि ये एल्बम जो है ये एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, जब मैंने भीड़ भाड़ से हट के, शोर से हट के अपने रियल सेल्फ से मुलाकात की तब जो एक रियलाइजेशन मुझे हुआ उस पर बेस्ड है ये करके। एनीवे मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस एल्बम के लिए। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: इस वीकेंड का क्या प्लान है?
2: सफारी हाइपर मार्केट जाना है, कार लेने।
1: कार लेने सफारी में?
2: और क्या, सफारी हाइपर मार्केट इज़दान मॉल गराफा का एक्सपेंडेड शोरूम की इनॉग्रेशन जुलाई 30th को है और कतर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है ये। एक्सपेंडेड आउटलेट इनॉग्रेशन के लिए MG3 2026 मॉडल कार जीतने का मौका, बस विजिट एंड विन। सिर्फ सफारी आउटलेट विजिट करो, विदाउट एनी परचेज यू विल गेट अ कूपन एंड यू कुड विन अ MG3 car. Promotion starts from July 30th to August 12th. Lucky draw on August 13th.
0: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का एक और बार इस्तकबाल है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। अगर आप चाहते हो वैल्वोलिन का एक बहुत ही बढ़िया मर्चेंडाइज जीतना, तो सीधा जाइए AMTC वैल्वोलिन, जहां पे आप ऑयल चेंज करा सकते हैं, एक बहुत ही कूल वैल्वोलिन मर्चेंडाइज जीत सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने गाड़ी को एक्सपर्ट केयर दे सकते हैं, जो आपकी गाड़ी डिजर्व करती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेंड वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, जो आपकी गाड़ी का ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे 100% जेन्युइन वैल्वोलिन के प्रोडक्ट्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, ऑयल्स हैं, जो आपकी गाड़ी को एकदम बढ़िया तरीके से बिंदास बना देंगे। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे ANPR टेक्नोलॉजी के साथ एक डिजिटल पासपोर्ट आपकी गाड़ी का मेंटेन किया जा सकता है, जिससे पता रहेगा कि आपकी गाड़ी में कौन से मेंटेनेंस चेक्स हुए थे, क्या क्या हुआ था करके। और आप विजिट कर सकते हैं AMTC वैल्वोलिन जो सलवा रोड में है, और कॉल भी कर सकते हैं उन्हें। कॉल करने के लिए एक नंबर है भाई, वो नंबर आप मैं बताता हूँ आपको, भाई आया है बता के जाएगा, नंबर मैं देता हूँ, आप सीधा कॉल करिए और कॉल करते वक्त बोलिए कि रेडियो ऑलिव से सुदेव भाई ने बोला था कॉल करने के लिए। तो नंबर है 7765595 4। तो आज ही आप कॉल कीजिए और विजिट कीजिए वैल्वोलिन AMTC, जहां पे आपकी गाड़ी को मिलेगा एक्सपर्ट केयर, जो आपकी गाड़ी डिजर्व करती है। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: अरे इस वीकेंड का क्या प्लान है?
1: सफारी हाइबर मार्केट जाना है, कार लेने।
0: कार लेने सफारी में?
1: और क्या, सफारी हाइबर मार्केट इज़दान मॉल गराफा का एक्सपेंडेड शोरूम की इनॉग्रेशन जुलाई 30th को है और कतर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है ये। एक्सपेंडेड आउटलेट इनॉग्रेशन के लिए MG3 2026 मॉडल कार जीतने का मौका, बस विजिट एंड विन। सिर्फ सफारी आउटलेट विजिट करो, विदाउट एनी परचेस यू विल गेट अ कूपन एंड यू कुड विन अ MG3 कार। प्रमोशन स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई 30th टू ऑगस्ट 12th। लकी ड्रॉ ऑन ऑगस्ट 13th।
2: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
4: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।

0: भाई चाइनीज ईवीज जो है अपने गेम पे अलग लेवल पे जा रहे हैं और मुझे लगता है कि कंपटीशन को जरा थम के इन्हें देखना पड़ेगा। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो कुछ चाइनीज ईवीज ऐसे आ रहे हैं जो काफी माइंड ब्लोइंग है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के बीच में जो एक फाइन लाइन है उसको मिटा रहे हैं बहुत ही प्यार से। सो बेसिकली आप अपने कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में कोई मैसेज लिख सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, और आपके कार के हेडलाइट से उस चीज़ को प्रोजेक्ट किया जाएगा। यानी कि इंपॉर्टेंट मैसेजेस को दिखाने के लिए, सब करने के लिए आपके कार का हेडलाइट जो है यूज़ किया जा सकता है, काइंड ऑफ अ प्रोजेक्टर। बट सोच के देखिए कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, और इसे पर्सनलाइजेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को या फिर अपने पार्टनर को एक हैप्पी बर्थडे मैसेज बहुत क्यूट तरीके से प्रोजेक्ट करना है स्क्रीन पे या फिर किसी वॉल पे, तो आप कर सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। बहुत ही कूल टेक जो है आजकल गाड़ियों में आ रहा है, और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: ओनली लगा और हो जा रिचार्ज, ओनली रिचार्ज,
0: ओनली रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: ओनली रिचार्ज।
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं बता दूं कि चैट जीपीटी आपके रिवीजन गेम को काफी स्ट्रांग बना सकता है। चैट जीपीटी के नए अपडेट्स के बाद जो है भाई, अलग लेवल पे चैट जीपीटी रिवीजन के गेम को लेकर जा रहा है। अगर आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना है, बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना है, तो आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट अगर डालेंगे कि मुझे एक माइंड मैप की तरह ये चाहिए या फिर एक हैंड रिटन नोट की तरह ये चाहिए विद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उस रिवीजन मटेरियल को वो आपको एक पेज में बना के दे देगा, या फिर एक फोटो में बना के दे सकता है, या फिर एक माइंड मैप बना के दे सकता है, ताकि ईजिली आप रिवाइज कर पाए। और इसमें एक चीज़ ये है कि जी, ये मॉडल पे और आपका सब्सक्रिप्शन कौन सा है उस पर डिपेंड ज़रूर करेगा, मगर अगर आप एक प्रॉपर तरीके से प्रॉम्प्ट डालेंगे तो आपके रिवीजन में बहुत हेल्प आपको चैट जीपीटी दे सकता है। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदा।

Story of the day. Story of the day. अगर आप जंगल में खड़े हैं और अचानक से सब कुछ खामोश हो जाए तो डरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जंगल की खामोशी अक्सर बताती है कि टाइगर आसपास है। और सबसे हैरान करने वाली बात, टाइगर की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, लेकिन उसके पंजों की आहट शायद आप कभी भी नहीं सुन सकते। उसकी चाल भी खामोश होती है, जंगल को उसके आने का एहसास होता है, आवाज नहीं। और एक और राज, दुनिया में दो टाइगर कभी एक जैसे नहीं होते। उनकी स्ट्राइप्स सिर्फ फर पर नहीं, उनकी स्किन पर होती है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स की तरह। इसीलिए कहते हैं, टाइगर को देखना सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं, वाइल्ड की असली लाइफ देखना है।

0: Suntehen number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे. लूनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है. रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं. स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूनो हाइपरमार्केट में.
2: लूनो, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
3: लगा और हो जा रिचार्ज.
0: ऑलिव रिचार्ज. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर. जियो बिंदास.
3: ऑलिव रिचार्ज.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

तो भाई धीरे धीरे टाटा बबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं, हमारा वक्त यहाँ पे खत्म होने वाला है। बहुत जल्दी 3 घंटे जो है निकल गए, मगर कोई गल नहीं जी, फिर मिलेंगे हम कल दोपहर को 2 बजे आपके साथ इसी सीट पर आएंगे गुफ्तगू करने के लिए, बातें करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वक्त बिताने के लिए। तो जाते जाते जाते यही दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए, और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। स्टे ट्यून्ड, यह है ऑल ओवर रिचार्ज, और मैं था आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास रेडियो।

0: इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: जॉय अलुकास ब्रिंग्स यू द जॉय ऑफ समर। The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
4: अरे, इस वीकेंड का क्या प्लान है?
0: सफारी हाइपर मार्केट जाना है कार लेने।
4: कार लेने सफारी में?
0: और क्या, सफारी हाइपर मार्केट इस दान मॉल गराफा का एक्सपैंडेड शोरूम की इनॉग्रेशन July 30th को है और कतर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है ये। एक्सपैंडेड आउटलेट इनॉग्रेशन के लिए MG3 2026 मॉडल कार जीतने का मौका। बस विजिट एंड विन। सिर्फ सफारी आउटलेट विजिट करो, विदाउट एनी परचेस यू विल गेट अ कूपन एंड यू कुड विन अ MG3 कार। प्रमोशन स्टार्ट्स फ्रॉम July 30th टू August 12th। लकी ड्रॉ ऑन August 13th।
5: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

यार मतलब मेरे स्वागत में एक सुरीला सा गाना गा दोगे यार, सिमरन तेरा इंतजार है, या फिर आ ये आपका इंतजार था। होता है कि कोई आपको कभी इस तरह से पैम्पर करे, और मैं आप लोगों को हर रोज पैम्पर करती हूँ 4 घंटे, तो आप लोग भी मुझे पैम्पर करिए, गाइए मेरे लिए गाना और बताइए आपका आज का दिन कैसा रहा। मैं की सोनिया के दादी की आज चल सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ, जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है, 4 घंटे में भी अपने रहने वाले हैं। कोई बात नहीं, आज के दिन ने अगर आपको पूरा सताया था तो मैं आपको एक मोटिवेशन देने जाऊंगी, कल थर्सडे है, बस कल काम खत्म होते ही आपका वीकेंड जो है वो चालू हो जाने वाला है। तो अभी फिलहाल आप भी चालू हो जाइए और बताइए अपने पूरे दिन के बारे में, और 3311106 पे मैसेज भेज दीजिए।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
1: इस वीकेंड का क्या प्लान है?
2: सफारी हाइपर मार्केट जाना है कार लेने.
1: कार लेने सफारी में?
2: और क्या, सफारी हाइपर मार्केट इज़दान मॉल गराफा का एक्सपैंडेड शोरूम की इनॉग्रेशन जुलाई 30th को है और कतर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है ये. एक्सपैंडेड आउटलेट इनॉग्रेशन के लिए MG3 2026 मॉडल कार जीतने का मौका. बस विजिट एंड विन. सिर्फ सफारी आउटलेट विजिट करो. विदाउट एनी परचेस यू विल गेट अ कूपन एंड यू कुड विन अ MG3 कार. प्रमोशन स्टार्ट्स फ्रॉम July 30th to August 12th. Lucky draw on August 13th.
0: Safari, world-class shopping experience. Doha, Qatar.
3: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक.
4: अरमान मलिक.
5: I'm number one.
3: 106.3 FM, Radio Olive, Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
6: Radio Olive, I'm number one.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ.
9: Zabardast evening. Make your drive golden with.
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joy Alucas. Joy Alucas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.
12: Just

ना ट्राई करती हूँ कि आपको कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बता सकूं जो कि बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर आए हुए थोड़ा सा टाइम हुआ है, ज्यादा नहीं पता है। लोगों के लिए ये रिमाइंडर भी एक सेट करते हैं कि यार रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे और आप भूल ना जाएं। मेघा जी सोनियो की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ। जबरदस्त इवनिंग्स में मैं आपको बताऊंगी, आपको पता है कि कतर में रहते हुए जब भी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम हर जगह कॉन्टेंट जो है ढूंढते हैं, हर जगह कैमरा लेके ढूंढते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन इसके बीच में अगर आप पब्लिकली कहीं पे कैमरा यूज कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप जो भी शॉट ले रहे हो, आपकी फोटो है चाहे वीडियो है, उसमें कोई जो है इंसान, उसके कंसेंट के बगैर आप अपनी वीडियो में नहीं दिखा सकते हो, ना ही अपने फोटो में दिखा सकते हो। सो मेक श्योर कि अगर मान लीजिए फोटो खींचनी जरूरी है, तो वो पार्ट जो है जिसमें किसी का चेहरा दिख रहा है वो ब्लर होना चाहिए, ये भी आप कर सकते हो। सो किसी के कंसेंट के बगैर आप कोई भी फोटो वीडियो मत अपलोड करिएगा, क्योंकि भारी

0: माना होगा और उसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। सो जस्ट एक छोटा सा रिमाइंडर, फ्रेंडली रिमाइंडर है आप लोगों के लिए, ये चीज को हमेशा फॉलो करिए, क्योंकि मतलब कदर की ब्यूटी ऐसी है कि मतलब देखते ही कैमरा निकल जाता है। और होता है यार, आजकल हम सब करते हैं, बट रूल्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ओवर इमोशनल नहीं होना है, ठीक है? सबकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है। सिमरन गौरिया की साथ जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे. लूना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है. रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं. स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं. सिर्फ लुलू हाइपरमार्केट में.
2: लुलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ.
6: Zabardast evening. Make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

0: इस बादल वाले गाने के साथ वो फील लेने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बोला गया था कि आजकल में बारिश हो सकती है यार, पर ऐसा कुछ सीन लग नहीं रहा है दोस्त।
1: वैसे आपने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किया है, आज का दिन आपको हम कैसे बयां करें, क्या बताएं आपको आज का दिन कैसा गया। इस गर्मी में तो वहाँ तो नहीं कर सकते तो बहुत बुरा हाल था। कल थर्सडे ये चीज हम सोचते हैं तो फिर एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। वैसे भी अभी शाम तो हो ही गया है, बचे कोई कुछ और देर फिर सब लोग घर चले जाएंगे, मजे आएंगे। कल थर्सडे सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, आपको भी आई थिंक थर्सडे ऑलवेज स्पेशल फॉर एवरीवन एंड वी आर वेटिंग फॉर टुमारो। मेरा तो आज दिन अच्छा ही था, आई होप सो आपका भी अच्छा ही गया होगा, आई मीन लिसनर्स का भी दिन अच्छा गया होगा। लेट्स सी टुमारो, कल देख।
0: So, उसके बाद इन्होंने वॉइस नोट भेजा और ये भूल गए कि मैंने एक और चीज भी पूछी थी।
1: Oh, I'm so sorry, सिमरन, मैं एक चीज तो भूल ही गया, आपने कहा था कि आपके लिए कोई आप प्यारा सा गाना गा दो और मैं बस अपना बकबक करके फोन कट कर दिया। I'm sorry. So, ये आपके लिए। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, चाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी पर जियो, जो है समा कल हो ना हो।
0: एक नंबर, आप सब लोग बड़े क्यूट हो यार।

एक काम करो, 9 बजे तक मेरे साथ रहना। तू जाना ना पिया, सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास। और अगर आप भी विनायक की तरह बताना चाहते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहा और मेरे लिए कोई गाना गाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स भेज दो यार 3311106 पर।

0: The 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
3: अरे, इस वीकेंड का क्या प्लान है?
4: सफारी हाइपर मार्केट जाना है कार लेने.
3: कार लेने सफारी में?
4: और क्या, सफारी हाइपर मार्केट इजदान मॉल गराफा का एक्सपैंडेड शोरूम की इनॉग्रेशन जुलाई 30th को है और कतर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है ये एक्सपैंडेड आउटलेट इनॉग्रेशन के लिए MG3 2026 मॉडल कार जीतने का मौका. बस विजिट एंड विन. सिर्फ सफारी आउटलेट विजिट करो. विदाउट एनी परचेस यू विल गेट अ कूपन एंड यू कुड विन अ MG3 कार. प्रमोशन स्टार्ट्स फ्रॉम July 30th to August 12th. Lucky draw on August 13th.
5: Safari, world-class shopping experience. Doha, Qatar.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ.
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
9: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
10: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: जी मैं जी सोने की दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ। यार आप लोग इतने क्यूट हो ना यार, मैंने आपसे बोला था कि आप मुझे बताइए आपकी आज का दिन आपका कैसा रहा, और दिल करे तो गाना भी गा दीजिएगा मेरे लिए। तो आप लोग सही में यार।
1: हेलो हाउ आर यू सिमरन, गुड इवनिंग।
0: वेरी गुड इवनिंग
1: जी आपके लिए। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुझको, शुक्र है फिर भी आए हो।
0: आ गई यार
1: जी आपके लिए।
0: थैंक यू है जी, सही में यार आप लोग बड़े ही क्यूट हो यार, थैंक यू सो मच। अब अगर किसी की सिंगिंग के कीड़े जाग गए हैं और मेरे को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हो, गा के सुनाना चाहते हो, तो बिल्कुल भेज दो 3311063 पर। बट उसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आपका आज का दिन कैसा रहा। मुझे और भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, धीरे धीरे करके वो सारे शेयर करती रहो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वेल्विन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वेल्विन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वेल्विन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वेल्विन ड्रिवन बाई ट्रस्ट पावर्ड बाई क्वालिटी।

0: ਆ ਗਈ ਬੇਬੀ ਆ ਗਈ। ਆਇਆ ਜੀ ਸੋਹਣਿਓ, ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बिल्कुल नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, नाम बोला जा चुका है, लेकिन मैं बोलूंगी यार सिमरन कौर आ चुकी है, ऐसी क्या बात होगी यार। लेकिन आप लोगों के नाम भी बोलूंगी, आप लोग इतने क्यूट हो यार, मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों की, गाने गा के भेज रहे हैं, अपने पूरे दिन के बारे में बता रहे हैं, सो क्यूट।
1: Yes, Simran ji, as usual, you are entertaining all the people listening to you.
0: Oh, thank you.
1: Excellent. For the next 4 hours.
0: Hanji.
1: Keep it up.
0: Thank you.
1: बहुत अच्छी बात है, हम सब तो enjoy करते हैं ये सब songs.
0: Okay.
1: And okay, 5:30 बज रहा है अभी, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है। अभी रूम में जाएंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे और हो सके तो नाइट का थोड़ा क्रिकेट का प्रैक्टिस भी कर लेंगे।
0: वाओ।
1: और आपके लिए गाना भी दे देता हूँ।
0: गाइए।
1: झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए।
0: थैंक यू सो मच, अलग लेवल हो यार आप लोग, थैंक यू सो मच। मेरे पर और भी मैसेजेस आए हुए हैं, धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन इन केस आपने मेरे लिए गाना दिल में ही गा दिया तो गलत किया। आप गाइए और बताइए अपने पूरे दिन के बारे में, भेज दीजिए 3311063 पर। मौसम की हाल कुछ इस तरह से, 38 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 40 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 49% है, विंड जो है 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, सो ये है हाल।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे. लुलु हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है. रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं. स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लुलु हाइपरमार्केट में.
2: लुलु, where the world comes to shop.
3: Fresh on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
4: Hi everyone, I'm Arman Malik, 106.3 FM, Radio Olive, Jio Bindas.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
2: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

कर दिया पूरा 100 किलो वाला। मैं कहीं सुनियो कि दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। एंड एक चीज जो है वो आपको, मुझे पता है कि उस चीज से भी अपना आप बहुत सारा प्यार है, आपको अपनी कार से प्यार है, लेकिन कार को जब दिक्कत होगी, जब उसको फीवर होगा, जब उसको दिक्कत होगी, तभी तो आप उसका चेकअप नहीं ना करवाएंगे। आपको अपनी कार को जो है प्रीमियम केयर देनी है, और वो कर सकते हैं वेल्वोलिन AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस, सलवा रोड पे है, जरूर चेक करवा लीजिएगा। एंड ऑयल चेंज पे आपको फ्री गिफ्ट भी मिलेगा। सो या, और उसके साथ साथ यहाँ पे जेन्युइन वेल्वोलिन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्रीमियम फिल्टर, यू नो, सबसे बढ़िया वाली बात इनकी ये है कि ANPR पावर डिजिटल कार पासपोर्ट है, जिसमें आपकी कार की पूरी सर्विस हिस्ट्री जो है एक ही जगह पे आ जाएगी। सो मेक श्योर कि आप इनके शोरूम विजिट करिए, लेकिन उससे पहले कॉल भी कर लीजिए। जब आप कॉल करेंगे तो मेरा नाम ले दीजिएगा कि सिमरन कौर ने बोला था कॉल करने के लिए, तो हम कर रहे हैं यार। 7765 5954, एक बार वापस से बता रही हूँ, 7765 5954। ओके, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। एंड जो मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आपके दिन के बारे में पूछा है और बोला है कि मेरे लिए कुछ गा दो, और आप लोगों ने तो

0: ने लगा, मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी, धर का ये दिल बात थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है?
1: एक नंबर। और अगर आपके दिल में भी है कि सिमरन कौर को बताना है अपने आज के दिन के बारे में और गाना है उसके लिए, गाना तो गा दो और भेज दो 3311063 पर।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
2: इस वीकेंड का क्या प्लान है?
3: सफारी हाइबर मार्केट जाना है कार लेने।
2: कार लेने सफारी में?
3: और क्या, सफारी हाइबर मार्केट इज़दान मॉल गराफा का एक्सपेंडेड शोरूम की इनॉग्रेशन जुलाई 30th को है और कतर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है ये। एक्सपेंडेड आउटलेट इनॉग्रेशन के लिए MG3 2026 मॉडल कार जीतने का मौका, बस विजिट एंड विन। सिर्फ सफारी आउटलेट विजिट करो, विदाउट एनी परचेज यू विल गेट अ कूपन एंड यू कुड विन अ MG3 car. Promotion starts from July 30th to August 12th. Lucky draw on August 13th.
4: Safari, world-class shopping experience. Doha, Qatar.
5: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And

0: Lucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August.
1: Terms and conditions apply.
0: Joya Lucas, world's favorite jeweler.
2: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
3: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
3: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
4: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोया लुकास। जोया लुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: बताओ एनर्जी की कमी है? चार घंटे का वादा है कि एनर्जी की कमी नहीं होगी, जितना भी मूड वूड आपका खराब है, डाउनर फाउनर आ रहा है, तो कुछ नहीं होने वाला यार। और आप लोग इतने क्यूट हो गए यार, मेरी एनर्जी फुल कर देते हो।
1: हाय सिमरन जी, गुड इवनिंग।
0: वेरी गुड इवनिंग,
1: क्या हाल चाल है? उम्मीद आप ठीक होंगी।
0: बहुत बढ़िया
1: जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ।
0: अरे दैट्स ओके।
1: आपने पूछा था कि कैसा गुजरा आज का दिन, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, और आपके लिए सॉन्ग भी मैं गाना चाहूंगा।
0: अरे गाइए गाइए।
1: सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और ननन में दिए जल उठते हैं, आजा पिया आजा तेरे ही संग जलते दिए, बितानी तेरे साए में साए में, इवनिंग बितानी तेरे साए में।
0: स्वीट यार, लेकिन दिए का घी हो गया था। जस्ट किडिंग यार, आप लोगों का प्यार जो है ना, बस क्या ही चाहिए यार। मतलब मुझे चाहिए 100 किलो वाला प्यार चाहिए, अगर मैं आपको 100 किलो वाला प्यार देती हूँ तो। और क्या यही प्यार है? आज संजू बाबा का बर्थडे, ऐसा गाना हो ही नहीं सकता कि ना बजे।
2: क्या यही प्यार है?
0: बस थोड़ी देर में, लेकिन उसके साथ
3: रेडियो ऑलिव पर What the viral? क्या बात है? RJ सिमरन के साथ What the viral?
0: ये बात है। So, एक बंदी ने 1980s की बात है, so, उसने एक रिंग खरीदी, you know, 19th सेंचुरी की वो रिंग थी, डायमंड रिंग थी, ओके, उस टाइम उसने $13 में खरीदी, और 2017 में उस बंदी ने जब वो रिंग बेची तो पता उसको कितने मिले? अब देखो मुझे उतना हिसाब नहीं लगाने आता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है वो जो रिंग सेल हुई वो 8.13 करोड़ रुपीज की थी। ओ माई गॉड, मतलब 1980 में खरीदी थी उसने एक हॉस्पिटल कार बूट सेल पर, और भाई साहब देख रहे हो, अलग लेवल।

0: Olive B. Story of the day. Story of the day.
1: अगर आप जंगल में खड़े हैं और अचानक से सब कुछ खामोश हो जाए तो डरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जंगल की खामोशी अक्सर बताती है कि टाइगर आसपास है। और सबसे हैरान करने वाली बात, टाइगर की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, लेकिन उसके पंजों की आहट शायद आप कभी भी नहीं सुन सकते। उसकी चाल भी खामोश होती है, जंगल को उसके आने का एहसास होता है, आवाज नहीं। और एक और राज, दुनिया में दो टाइगर कभी एक जैसे नहीं होते। उनकी स्ट्राइप्स सिर्फ फर पर नहीं, उनकी स्किन पर होती है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स की तरह। इसीलिए कहते हैं, टाइगर को देखना सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं, वाइल्ड की असली लाइफ देखना है।

0: सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर। कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: इतने क्यूट क्यों हो यार?
1: गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? कैसा दिन गुजरा आपका भी?
2: बहुत बढ़िया.
1: और आप वैसे खुद भी बहुत स्वीट हैं. आप कहती रहती हैं कि मेरे लिसनर्स बहुत क्यूट हैं, कहना हम आपको सुनते हैं, हमें आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है और आपकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें बहुत अच्छी लगती है. और हम तो इंतजार करते हैं कि कब 5 बजेंगे और कब सिमरन जी आएंगी और फिर हमारा दिन बन जाएगा. बस इसी तरह से दिन गुजरता है.
0: आसमा जी थैंक यू सो मच, शाम बना दी यार आपने मेरी. यार इस तरह से जब भी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपके दिल में कोई भी इमोशन हो ना, निकाल दो और भेज दो 3311063 पर.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: अरे इस वीकेंड का क्या प्लान है?
2: सफारी हाइपर मार्केट जाना है कार लेने.
1: कार लेने सफारी में?
2: और क्या, सफारी हाइपर मार्केट इस्दान मॉल गराफा का एक्सपैंडेड शोरूम की इनॉग्रेशन जुलाई 30th को है और कतर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है ये. एक्सपैंडेड आउटलेट इनॉग्रेशन के लिए MG3 2026 मॉडल कार जीतने का मौका. बस विजिट एंड विन. सिर्फ सफारी आउटलेट विजिट करो, विदाउट एनी परचेस यू विल गेट अ कूपन एंड यू कुड विन अ MG3 car. Promotion starts from July 30th to August 12th. Lucky draw on August 13th.
0: Safari, world-class shopping experience. Doha, Qatar.
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
4: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
5: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
4: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
5: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
4: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.

बहाना मत बनाओ। रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज, रेडियो ऑलिव वाले पे और हैप्पीनेस लाउंज वाले पे जाओ, एक रील अपलोड करी है यार, जाके देखो एंड शो सम लव, अगर आपको अच्छी लगी तो ठीक है। और आज ट्रिविया शिविया में हम किन के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका बर्थडे है। भाई MBBS की शूटिंग चल रही थी, उसमें जादू की झप्पी आपको पता है कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ, तो जादू की झप्पी जब संजय दत्त एंड सुनील दत्त दोनों बाप बेटे के बीच में होती है, कहते सीन ऐसा हो गया था कि दोनों इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे और राजकुमार हिरानी ने कट भी बोल दिया था, लेकिन दोनों हक करने से मतलब हट नहीं रहे थे, इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे। इसमें आपको पता है कि डॉक्टर्स एंड ऑल का बहुत जोक वगैरह किया गया, मजाक उड़ाया गया, तो राजकुमार हिरानी को बहुत डर लग रहा था कि भाई जब ये फिल्म यू नो इंडिया के डॉक्टर देखेंगे तो मेरे साथ मेरे लिए किस तरह का जो है वो रिएक्ट करेंगे। सो या और उसके साथ साथ बोमन ईरानी, आपको पता है कि मेन है यार ये बंदा है ना, तो बोमन ईरानी और संजय दत्त एक ही एज के हैं, शायद आपको नहीं पता था तो मैं बता देती हूँ इस फिल्म में। सो या ये चीज जो है वो दिखाई गई, उनके सीनियर जो है वो बने हुए हैं। इस फिल्म से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू संजू बाबा। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: अरे इस वीकेंड का क्या प्लान है?
2: सफारी हाइपर मार्केट जाना है कार लेने।
1: कार लेने सफारी में?
2: और क्या, सफारी हाइपर मार्केट इज़दान मॉल गराफा का एक्सपेंडेड शोरूम की इनॉग्रेशन जुलाई 30th को है और कतर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है ये। एक्सपेंडेड आउटलेट इनॉग्रेशन के लिए MG3 2026 मॉडल कार जीतने का मौका, बस विजिट एंड विन। सिर्फ सफारी आउटलेट विजिट करो, विदाउट एनी परचेज यू विल गेट अ कूपन एंड यू कुड विन अ MG3 कार। प्रमोशन स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई 30th टू ऑगस्ट 12th। लकी ड्रॉ ऑन ऑगस्ट 13th।
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
4: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
5: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
4: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
5: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन ड्रिवन बाई ट्रस्ट पावर्ड बाई क्वालिटी।
6: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ, रेडियो ऑलिव बोलो बिंदास।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
10: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
11: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: था वो शाहरुख खान को दिया गया था, बट उनको नेक इंजरी थी, इस वजह से उन्होंने रोल को डिक्लाइन कर दिया। फिर विवेक ओब्रॉय के पास आया रोल, फिर जिमी शेरगिल के पास आया, बट जिमी शेरगिल को बाद में जो था वो जहीर जो पेशेंट बने होते हैं उसका रोल मिला, संजय दत्त जो थे वो इन हुए इस रोल के लिए। बट जो ग्रेसी सिंह वाला कैरेक्टर था ना, उसको रानी मुखर्जी करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बट उसको समहाउ डेट्स की प्रॉब्लम हुई, वो शूटिंग चल रही थी उनकी, है ना, तो फिर उन्होंने भी ड्रॉप कर दिया। तब्बू के पास भी गया था वैसे ये रोल। और सर्किट के रोल की बात करें जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अरशद वारसी, राइट, आज तक भी लोग उनको याद करते हैं। पहले ये रोल मकरन देश पांडे के पास गया था, जो कि बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, कतर में आए थे, जब उनसे मिलना हुआ, उनसे बात करनी हुई, बड़ा अच्छा लगा था यार, बट समहाउ ये रोल जो था वो अरशद वारसी के पास जो था वो चला गया। सो सबसे टफेस्ट सीन इस फिल्म का पता कौन सा है? वो कैरम बोर्ड वाला सीन याद है आपको, सारे लोग कैरम खेल रहे होते हैं, सो वो सीन काफी ज्यादा टफ था। कहते कि मल्टीपल शॉट्स थे, मल्टीपल एक्टर्स थे, और टेबल पे सारी चीजें जो थी वो सीन में मर्ज करनी थी, तो काफी ज्यादा उनको दिक्कत आई इस सीन को करने के लिए। समहाउ आज जानते हैं यार, मुन्ना भाई, MBBS, जादू की जप्पी, संजय दत्त, पूरी चीजें जो थी वो संजय दत्त के लिए चेंज हो गई थी। तो हमारी तरफ से उनको बहुत सारा हैप्पी वाला बर्थडे है जी, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। थोड़ी देर में नेम गेम भी खेलेंगे। और याद है, नहीं पता है बता देते हैं, चक्को जी अगला गाना
1: अब सुनिए, ऑलिव का जबरदस्त है।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार.

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
3: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: 20 मिनट 12 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। मैं क्या जी सुने हो कितना देखिए हाल चाल सत श्री अकाल। और
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: हम बचपन से कहावत जो है वो सुनते आए ना कि चद्दर देख के पैर पसारो। मेरी मम्मा भी ये कहावत जो थी बोलती, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि यू नो चद्दर देख के आपको पैर जो है पसारना चाहिए। बच्चों को नॉर्मली जो है वो सिखाया जाता है कि मतलब थोड़ा आप हर सिचुएशन में जो है वो रहना सीखिए टाइप्स, है ना। बट आजकल एक चीज काफी ज्यादा इन है जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, जिसमें ये लिख रहे हैं कि तुम अपने पैर मत मोड़ना, ऊपर वाला चद्दर को लंबा कर देगा। ओ माई गॉड यार, बहुत सही बात है कि लाइक हमको हमेशा ये चीज सोच के नहीं चलना कि नहीं यार कम में चलते हैं, ये नहीं सोचेंगे, ये बड़ा ख्वाब नहीं देखेंगे, ये नहीं हो सकता है। भाई तुम ख्वाब देखो, तुम आगे बढ़ने की जो है ना वो हिम्मत करो, ऊपर वाला अपने आप आपकी हेल्प कर देता है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
3: अरे इस वीकेंड का क्या प्लान है?
4: सफारी हाइबर मार्केट जाना है, कार लेने।
3: कार लेने सफारी में?
4: और क्या, सफारी हाइबर मार्केट इज़दान मॉल गराफा का एक्सपैंडेड शोरूम की इनॉग्रेशन जुलाई 30th को है और कतर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है ये। एक्सपैंडेड आउटलेट इनॉग्रेशन के लिए MG3 2026 मॉडल कार जीतने का मौका। बस विजिट एंड विन। सिर्फ सफारी आउटलेट विजिट करो, विदाउट एनी परचेज यू विल गेट अ कूपन एंड यू कुड विन अ MG3 car. Promotion starts from July 30th to August 12th. Lucky draw on August 13th.
5: Safari, world-class shopping experience. Doha, Qatar.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
9: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
10: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

दोस्तों, अब आपका नाम लेंगे। सिमरन कौर है आपके साथ, बिना देर लगाए अब अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी के अभी रेडियो पे बोल दूं और आप अपना नाम सुन भी ले रेडियो पर, तो आप एक काम करिएगा, अपना नाम बस मुझे सिर्फ और सिर्फ लिख के भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको बता देती हूँ जहां पर आप मुझे लिख के व्हाट्सएप करेंगे, 3311063। प्यार से बोलती हूँ, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दो। चलो मैं नाम बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। अदील भट्ट, हमजा, सेजू, स्मिता, मोहम्मद इब्राहिम, हमजा, शोएब, पाली, आसमा, फिलिप, हुजाइफा जी, थैंक यू सो मच, मरिया जी, थैंक यू सो मच, शामी जी, थैंक यू सो मच, शेजू, स्मिता, ऑलरेडी आपका नाम ले चुकी हूँ मैं, लतीफुल्ला जी, थैंक यू सो मच, अतर अब्बास जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, क्या नाम है, संजल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, कृतिका जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अदील जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सिर्फ और सिर्फ नाम लिख के भेजो दोस्तों। मुकेश रैना जी, थैंक यू सो, राणा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सोहेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, अमीकान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रहमान जी, थैंक यू सो मच, उमेर जी, थैंक यू सो मच, रैम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, यश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, यासीन अबासी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, खेमराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सोनू जी, थैंक यू सो मच, मरिया, ऑलरेडी मैं आपका नाम ले चुकी हूँ दोस्तों। जिन जिन के नाम ले लूँ ना, वो दोबारा नाम ना लिखें ताकि बेचारे दूसरे लोगों का नंबर लग जाए, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों के नाम ले देती हूँ फिर। मोहम्मद अनस जी, थैंक यू सो मच, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद सजी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, कामरान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सौद आजमी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया, अब आप थैंक यू लिखिए बिल्कुल, और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी बनाना मत भूलिएगा।

बाजीराव मस्तानी से आप ये गाना सुन रहे हैं, शिव घोषाल की मीठी सी आवाज। चलो एक चुटकी सॉन्ग सुनो, 9 seconds में आपको बताना है मुझे गेस करके ये गाना कौन सा है। आप अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर सकते हो, जितना मन करे आपका उतनी बार

सा गाना लग रहा है आपको, ये देखो लिखना नहीं है, वॉइस नोट भेजना है। हे सिमरन एकदम एनर्जी के साथ गाना गाइए, बहुत बढ़िया है। गाना बताना चाहते हैं तो भी आप ऐसे हो सकते हैं और भेज दीजिए 3311106 पर।

0: वेट कर रही हूँ यार.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
3: Cool song.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ.
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: सुन के आपको किसी ना किसी की जोर जोर से याद आने वाली है, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं है, याद आती रहती है, दो चार छीके आ जाएंगी, है ना। सो अभी के लिए मुझे आप लोगों के मैसेजेस देख के मतलब आप लोगों की बड़ी याद आई है कि यार काश आप यहाँ पे होते स्टूडियो में मेरे साथ ये कॉन्टेस्ट खेलते तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट ब्यूटी है ये रेडियो की कि एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और खेल सकते हैं।
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया, बहुत।
0: और मैंने आपको ये चुटकी भर सॉन्ग सुनाया था, अब आप लोगों के जवाब सुने।
3: हाय सिमरन,
0: हाय,
3: आपने जो एक चुटकी सॉन्ग सुनाई,
0: हाँ,
3: ये है फिल्म मार्चिस से, छोड़ाए हम वो गलियां,
0: ब्यूटीफुल।
4: चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले,
0: एक नंबर।
5: Hey Simran, this is Moon.
0: Hi Moon.
5: The song is छोड़ाए हम वो गलियां।
0: My God. मोर, एक तो आपका नाम बड़ा बड़ा यूनिक है और ऊपर से आपकी आवाज बहुत प्यारी है यार। बिल्कुल छोड़ा है हम वो गलियां, ये वही वाला गाना था यार।

0: OLIFP. Story of the day. Story of the day. अगर आप जंगल में खड़े हैं और अचानक से सब कुछ खामोश हो जाए तो डरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जंगल की खामोशी अक्सर बताती है कि टाइगर आसपास है। और सबसे हैरान करने वाली बात, टाइगर की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, लेकिन उसके पंजों की आहट शायद आप कभी भी नहीं सुन सकते। उसकी चाल भी खामोश होती है, जंगल को उसके आने का एहसास होता है, आवाज नहीं। और एक और राज, दुनिया में दो टाइगर कभी एक जैसे नहीं होते। उनकी स्ट्राइप्स सिर्फ फर पर नहीं, उनकी स्किन पर होती है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स की तरह। इसीलिए कहते हैं, टाइगर को देखना सिर्फ वाइल्ड लाइफ नहीं, वाइल्ड की असली लाइफ देखना है।
1: यू आर लिसनिंग टू Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

अब सिमरन कौर के तो यहाँ से गलती माने का टाइम आ चुका है, लेकिन शो के आखिरी दो गाने बताऊंगी यार। इसलिए क्योंकि कल भी

रहे हो कि दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ और सिमरन कौर के यहाँ से गलती माने का टाइम आ चुका है लेकिन खुशी इस चीज की है कि कल अकेले नहीं आऊंगी कल वीकेंड को साथ में लेके आऊंगी सो या ओवरथिंकिंग मत करिएगा काम वाम सब हो जाएगा उसकी टेंशन नहीं लेनी है ठीक है खाइए पिए रील स्क्रॉल करिए और सो जाइए ठीक है खंदे मित्र वाइज करते रहो चेहरे पे बड़े वाली स्माइल लोगों किसी का दिल मत दुखाना बी नाइस टू एवरीवन यार गुड नाइट जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो

Welcome. Good evening. You are listening to Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you, Ashok, and I'm, yes, of course, Midnight Lounge. आज रात एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ आपसे. सुबह ऑफिस या कॉलेज के लिए रेडी होते वक्त सबसे पहले डिसीजन क्या होता है और आज क्या पहनूं? और मजेदार बात यह है कि रिसर्च कहती है कि हम रोज सुबह उठते हैं, उठने से लेकर रात तक जो है 35,000 से भी ज्यादा डिसीजंस लेते हैं. छोटे छोटे डिसीजंस, क्या पहनना है, क्या खाना है, किस मैसेज का रिप्लाई पहले देना है, और धीरे धीरे हमारा दिमाग थकने लगता है. इसी वजह से दुनिया के कुछ सक्सेसफुल लोगों ने एक अजीब सा रूल बनाया. स्टीव जॉब्स हमेशा ब्लैक टर्टल नेक टी शर्ट पहनते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था. और मार्क जुकरबर्ग भी ऑलमोस्ट रोज ग्रे टी शर्ट पहनते हैं. बराक ओबामा ने भी इंटरव्यू में कहा था कि वो सूट के कलर्स को लिमिटेड रखते हैं क्योंकि उनके हिसाब से छोटे डिसीजंस पर एनर्जी खर्च करने से बेटर है कि वो बड़े फैसलों के लिए बचा कर रखें. सो इसे ना डिसीजन फटीक कहते हैं. वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर. लेकिन बल्कि उन छोटी छोटी चीज़ों को सिंपल बनाना भी बहुत आसान कर देता है आपकी लाइफ को. शायद इसीलिए आज की लग्जरी में ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, एक क्लियर माइंड है. सो व्हेन यू नो वीकेंड इज हेयर, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये बात याद दिलाई जाए, क्योंकि वीकेंड पर आप बहुत सारी शॉपिंग करने के बारे में सोचते हो. आप सोचते हो कि यार ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, यहाँ पर सेल है, वहाँ पर सेल है. पर अगर आप अपनी डेली रूटीन से एक छोटा सा डिसीजन हमेशा के लिए हटा सकते सो वो क्या होता? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

फैल गया। कुछ ही पलों में जो प्राइजेस थे वो ऊपर नीचे होने लगे और सारी मार्केट जो है वो इधर उधर हो गई। बाद में गलती पकड़ी गई, ट्रांजैक्शंस को इन्वेस्टिगेट किया गया, लेकिन इस इंसिडेंट ने एक बहुत बड़ी बात सिखा दी थी। टेक्नोलॉजी कितनी भी स्मार्ट हो जाए, उसके पीछे बैठना इंसान को ही पड़ता है सबसे इम्पोर्टेंटली। और शायद ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है, कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़े डिसीजंस ही हमारी लाइफ बदलते हैं, लेकिन कई बार एक छोटी सी लापरवाही जिसे आप कहते हो, या एक छोटा सा एरर जिसे हम कहते हैं, थॉटफुल पॉज पूरी डायरेक्शन को बदल सकती है। सो स्पीड से पहले एक्यूरेसी ज़रूरी है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपके साथ कभी ऐसी कोई छोटी सी गलती हुई है जो उस वक्त तो एम्बैरेसिंग लगी हो लेकिन बाद में एक फनी या मेमोरेबल स्टोरी बन गई हो? नंबर है 3311063। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है जबरदस्त इवनिंग्स. आज रात एक किताब की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है. नाम है द लिटिल प्रिंस. 1943 में लिखी गई ये छोटी सी किताब आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शामिल है. इसके पीछे खास बात ये नहीं है कि किसी मिलियंस ऑफ कॉपीज को इसने बेचा है इसलिए ये इतनी फेमस है, बल्कि बात यह है कि उम्र का इंसान जो है, मतलब कई बार आपने देखा होगा, ये अलग तरीके से समझता है हर इंसान हर उम्र में. बचपन में पढ़ाई तो एक प्यारी सी फेरी टेल्स लगती है, जवानी में कई बार ऐसे लगता है कि उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि दोस्ती और मोहब्बत की कहानी है, और ज़िंदगी थोड़ा और सिखा देती है और वही किताब लाइफ को सबसे गहरे सवालों का जवाब देने लगती है. एक लाइन मुझे हमेशा से याद रहती है, व्हाट इज़ एसेंशियल इज़ इनविजिबल टू द आई. शायद इसीलिए कुछ बुक्स कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि वो बदलती नहीं, हम बदल जाते हैं. सो ऐसी कौन सी किताब है या कहानी है जिसे आप दोबारा पढ़ने चाहोगे या पढ़ने जाओगे तो आपको वो एकदम डिफरेंट लगेगी. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो. बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM.

गुड इवनिंग, वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल एट 106.3 FM और ये है मिडनाइट लाउंज. कभी सोचा है, हम सब जानते हैं कि अच्छी हैबिट्स क्या होती हैं. रोज़ थोड़ा पढ़ना, एक्सरसाइज करना, फ़ोन कम चलाना, फिर भी शुरुआत क्यों नहीं हो पाती. एक इंटरेस्टिंग सी रिसर्च कहती है कि कभी कभी प्रॉब्लम ना विल पावर की नहीं होती, प्रॉब्लम सिर्फ 20 सेकेंड की होती है. इसे कहते हैं द 20 सेकेंड रूल. अगर किसी अच्छी हैबिट को सिर्फ 20 सेकेंड आसान बना दो तो उसका शुरू होने के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं. जैसे अगर रात को सोने से पहले बुक जो है वो तकिए के पास रखी हो तो पढ़ने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं. अगर फ़ोन को बेड से थोड़ा सा दूर चार्ज पर लगा दो तो सुबह उठते ही स्क्रॉलिंग भी थोड़ी सी कम हो सकती है. कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है ना. कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए बड़े रेजोल्यूशंस की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एनवायरमेंट में एक छोटा सा चेंज काफ़ी होता है. और शायद इसीलिए कहते हैं डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है. सो अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक अच्छी हैबिट को 20 सेकेंड आसान बना सकते तो वो कौन सी होती. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मुस्कान है आपके साथ. मैं हूँ यहाँ पर रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज लेकर. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल एट 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. सो एक छोटा सा सवाल है आपसे, कभी फ्लाइट में खाना खाते वक्त लगा यार घर जैसा टेस्ट नहीं है? ऑफ कोर्स, और हम अक्सर सोचते हैं कि शायद एयरलाइंस ने अच्छा खाना ही नहीं बनाया, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी सरप्राइजिंग है. आपको पता है साइंटिस्ट कहते हैं कि जब एयरप्लेन लगभग 35 फीट की हाइट पर होता है तो केबिन की ड्राई एयर और प्रेशर की वजह से हमारे टेस्ट और स्मेल दोनों 25-30% तक कम हो जाते हैं. मतलब ये मैंने पढ़ा और उसके बाद एक्सपीरियंस भी किया है, और पिछली बार भी मैं ऐसे ही कुछ यू नो फैक्ट्स आपके लिए लेकर आई थी. इसीलिए जो खाना ज़मीन पर परफेक्टली टेस्टी लगता है, वही यू नो 35 फीट हवा में थोड़ा सा ब्लेंड महसूस होता है. इसी वजह से एयरलाइंस अपने मील्स में स्पाइसेस और सीजनिंग का बैलेंस भी अलग रखते हैं. कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है ना, कभी कभी प्रॉब्लम खाने में नहीं होती, हमारे सेंसेस में होती है. और आपने देखा होगा कि कई बार हमें, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो सिर्फ वो जो रेडीमेड नूडल्स आते हैं या फिर जो रेडीमेड पोहा होता है वो बड़ा टेस्टी लगता है, स्पेशली इन प्लेन्स. सो आप मुझे बताओ आपका फेवरेट मील क्या है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और जब आप प्लेन में होते हो. बस नज़रिया बदलता है और पूरा एक्सपीरियंस अलग ही चेंज हो जाता है. सो फ्लाइट का वो कौन सा मील है जो आपको सरप्राइजिंगली बहुत पसंद आता है? यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311-1063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: Milo.
1: ये है Midnight Lounge.
2: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

So, आज की कहानी सिर्फ एक फोटोग्राफ की है, लेकिन उसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। साल था 1972, अपोलो 17 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स पहली बार इतनी दूर से अर्थ की एक फोटो लेकर आए थे, और उस फोटो का नाम था ब्लू मार्बल। पहले थोड़े दिन पहले भी हमने ये ब्लू मार्बल की बात की थी, जब लोगों ने पहली बार अपने प्लैनेट को इतना अच्छे से देखा था, स्पेस से देखा था कह सकते हैं। तो किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक नीली सी दुनिया, ना कोई अलग अलग चीज़ें, ना कोई अलग अलग घर, कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक छोटा सा नीला प्लैनेट जो अंधेरे स्पेस में कहीं ना कहीं तैर रहा है। और उस एक तस्वीर में दुनिया को एक नया एहसास दिलाया कि हम सब चाहे कहीं भी रहें, आखिर रहते एक ही घर में हैं। सो एनवायरमेंटल मोमेंट को इसी फोटो से एक नई पहचान मिली। सो कभी कभी एक तस्वीर जो है वो हज़ार स्पीचेस से ज़्यादा असरदार हो जाती है, और आजकल तो फोटोग्राफर्स की बहुत डिमांड है। वी सी के अलग अलग नज़रिया हमें दिखाया जाता है, अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया पे हर फोटो पे फोकस करके आपको छोटी छोटी चीज़ें याद दिलाई जाती हैं जो पहले नहीं होता था। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।
2: ये है मिडनाइट लाउंज।

Welcome back. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with the You Or Show ka naam Midnight Lounge. So, aaj ki kahani thodi si future wali hai. Sochiye, aap ek hotel pahunchte hain. Na reception desk, na koi check-in line, na koi room ki chabi. Bas phone nikaliye, ek notification aata hai aur wahi phone aapke room kya key ban jata hai. Duniya ke kai sare hotels ab isi concept par kaam kar rahe hain. Check-in online, digital room keys aur agar kuch chahiye to AI चैटबोर्ड पर आप आपकी जो हेल्प है वो करने के लिए रेडी है. टेक्नोलॉजी ने ट्रैवलिंग को पहले से कहीं ज़्यादा मतलब फास्ट और कन्वीनियंट बना दिया है. लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है. कभी होटल में एंटर करते ही रिसेप्शनिस्ट की जो मुस्कान होती थी वो सबसे खूबसूरत लगती थी. एक सिंपल सा वेलकम या फिर लोकल प्लेसेस अगर कोई बताता है तो वो वही होटल के ही लोग होते हैं जिनसे हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं और वो सफ़र को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. और मुझे तो ऐसे ही बहुत सारे लोग मिले हैं जो कहीं ना कहीं उस होटल में ट्रैवल करते टाइम मिले. और अगर सब कुछ टेक्नोलॉजी बताएगी तो फिर हम कैसे लोगों से कनेक्ट करेंगे. लेकिन कहीं ना कहीं इंसानों के बीच की वो छोटी सी वार्मथ भी धीरे धीरे ना कम हो रही है. तो शायद फ्यूचर स्मार्ट होगा लेकिन उम्मीद है कि थोड़ा सा ह्यूमन भी रहे. मतलब आई रियली लाइक वो यू नो जो वार्मथ होती है लोगों की बात करने में. अगर चॉइस मिले तो आप फास्ट AI सर्विस चूज करोगे या फिर मुस्कुराते हुए इंसान को और वेलकम कहते हुए लोगों को. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव. नंबर है 3311-1063. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: ये है मिड नाइट लाउंज.
1: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास.

Welcome back. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. और शो का नाम yes, of course, Midnight Lounge. शो खत्म करने से पहले आज आपको एक खूबसूरत जापानीज वर्ड को सिखाकर जाती हूँ. कोमोरेबी. इसका मतलब है पेड़ों के पत्तों के बीच से गुजरती हुई धूप. आप सोचिए कितनी लंबी और गहरी लाइन है एक ही वर्ड में. सोचिए जिस एहसास को डिस्क्राइब करने के लिए हमें पूरी सेंटेंस को बोलना पड़ता है उसके लिए जापानीज लैंग्वेज में सिर्फ एक शब्द है, कोमोरेबी. मुझे लगता है कि हर लैंग्वेज के पास कुछ ऐसे लव्स होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ बड़े अचीवमेंट्स के नाम नहीं है. कभी ये सुबह की पहली चाय, कभी बारिश की मिट्टी की खुशबू, कभी वो घर का बना हुआ खाना और साथ, और कभी यू नो पेड़ों के बीच से आती हुई धूप. ये सब छोटे छोटे पल ज़रूर हैं, लेकिन शायद असली खुशी भी इसी में छुपी होती है. हम अक्सर ज़िंदगी की बड़ी मंजिल को ढूंढते रहते हैं और खुशी रास्ते में हमारा इंतज़ार कर रही होती है. सो आपकी ज़िंदगी का कोमोरेबी मोमेंट क्या है, वो छोटा सा पल जिसे याद करके आज भी बिना वजह आप मुस्कुरा देते हैं. इस खूबसूरत ख्याल के साथ I have to say कि मुझे जाना होगा. नंबर है 3311063. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो. बिंदास.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3।

0: तो बहुत काम
1: है। भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: wow.
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: I'm not listening
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी।
1: I'm not listening
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: okay, I'm not with
0: her. इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: okay, that's it.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिन

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम

are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।